थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए, ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास, हेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए, तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंचकर

शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। यह तद्भस्म उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले उस जीव को मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा बड़ा

ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी। कहीं भी कोई भी ऐसा अब नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है, ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं, ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है, कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को, यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है, यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहता, कहते तो हमारा आज सौभाग्य न होता, कहां मैं कुलटागामी अपवित्र, और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम, ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला, आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा, जैसा सोचना है वैसा तुम अभी
अभी निश्चय करो।

तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो, सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोग भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद, क्या चाहिए तुम्हें? शांति सुख आनंद तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, आप मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो निशानी, अब नाम से हो, जितनी श्वासें हैं अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। तुम्हारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नहीं, आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से, आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकेंड सार्थक करो, कोई भी सेकेंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजें ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, ये चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन। एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता, और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो, एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई, क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना। ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल, नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का, नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, और दासोहम में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, आंख मूंद के दौड़ो
वात्सल्य समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते। वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो भी मुक्त हो, देखो ना, एक नाम ने सत्यो माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, आहा, मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में न परिचय होगा न प्रीति होगी, भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल से फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है न तैरने की जरूरत है, राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो, प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा, एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में कोई भी ऐसा। अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न है नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है। कुछ उसको इन सब विषयों को ना पढ़ने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान के ही तो नाम में छुपा हुआ है। परिचित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती है, क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना? नहीं। कोई बिरला ऐसा जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। छोटा ना समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है,
और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मार घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे, ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण। मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल बस ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो, जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है, नाम जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो, मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझने। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा, भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट की। कहीं भी भाग के जा तू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक के बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी. काम, क्रोध और लोभ नर्क के तीन द्वार हैं. श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है. काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है. इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है. इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो.

0: जिस वक्त आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश है? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भरे हुए, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ के एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं, या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत बेटर है उनसे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है।
2: सक्सेस इज नॉट
1: हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ। नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही करते हैं ना अपने माइंड में। वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहां पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मींस कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? मैं कहता हूं हाँ है। ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है, वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा। क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है वो सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, तो उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे ही करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए, आपकी लाइफ को अगर समअप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है? कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है, या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में, एट अ फिजिकल लेवल? क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है, ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ। और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो आप गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है, ये नेचर किसके लिए है, इसका मीनिंग क्या है? अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इस नेचर की क्या वैल्यू है? अगर यहां पर कोई है ही नहीं, इस प्लैनेट पे अगर लाइफ नहीं है, तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, छोटा छोटी सोच, छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना, बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है, कंफर्ट की वैल्यू है, बट उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है, खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं है, ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं, उसका

0: सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट। जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है, आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है। जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके इंप्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई, समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है? तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है? या ये कह लो कि एक सिक्का है, उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आज आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या इसके पीछे दूसरा सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है?
1: Yes.
0: वो मर सकता है इंसान?
1: Yes. Yes.
0: तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा? तो जहां डर होता है

0: या नहीं होगा? और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे। नहीं, समझ गए ना? तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसा ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन मैं घर में आया, मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं, मैं दुखी हूं। तो जिसको आप खुशी कह रहे हो वहां पे तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है। और हम खुश कैसे होते हैं, कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज हो करके, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशन में टच कर चुका हूं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। एडिक्ट हो जाते हैं हम, दोज आर मोर लाइक एस्केप्स। जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से। मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, तो ये एस्केप्स हैं। इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो, उस पर्सन के पास जाओ। तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर। और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई या उससे बोर हो गए या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं कि क्या किया है तूने। होता है नहीं होता है? हाँ। और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या, जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। कुछ भी हम अपने माइंड में कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, बट हम कभी ये नहीं समझते वहां पर क्या फ्लॉ है। जैसे स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के, अगर आपने उनको ऑब्जर्व किया हो, वहां पर क्या हो रहा है आजकल, ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत चल रही है, पता है आप लोगों को आइडिया है? हाँ, आप देखते होगे, मतलब कभी नोट किया हो कि कभी लिप्स बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ल पहले अच्छी थी अब और बुरी हो जाती है। तो समझो क्या हुआ, मतलब कितना फ्रेजाइल है कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है। तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए। नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में, जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली, थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते ही, वाह क्या किया है तुमने। लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दूपंती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है। तो वो थॉट बदल गया ना या नहीं बदला? वो थॉट जिसकी वजह से वो खुश हो रही थी, जिसकी वजह से पता नहीं कितना अपना काट पीट करवाई, ये करवाई वो करवाई, और करके शीशे में देखा आ हा मजा आ गया, वो मजा कहां गया, जैसे चार लोगों ने आकर के बोला ये क्या है, पहले ही सही था, अब वहां भी नहीं जा सकते, नाक लंबी कैसे होगी, छोटी तो हो जाती है, समझ आता है। जिंदगी भर के लिए फंस गई ना वो, क्यों? क्योंकि वो खुशी कहां ढूंढ रही है,
1: लोगों के कमेंट्स,
0: या तो अपने ही एक आइडिया में, अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी देखा ऐसे कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्रीम व्रीम लगाई और उसके बाद में गोरे भी हो गए, लोगों ने कहा ये क्या भूत आ गया। होता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाते हैं ना कई तरह के, कई स्पॉट्स पड़ जाते हैं और हो जाते हैं, हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं ना, फिर इंसान कहते हैं ये क्या हो गया, पहले ही ठीक था मैं तो। तो सुंदरता कहां है, बाहर है अंदर है? एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे, कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से। बट ऐसी एक्चुअल में है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है। एब्स है, ये है, वो है।

फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है। तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल। यही दुनिया की कहानी है। दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए हैं, भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहां जुड़ रहे हैं? थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है। और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है। कुछ भी आप पोजेस करते हो किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था। आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे तो हो नहीं आप लोग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके, कि जो भी है जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में, सब कुछ रहता है, रहे जाता है, चला जाए। ये नहीं कर सकते, इसका मतलब डर में जी रहे हो ना। आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती। ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते हैं, कुछ भी कर लो वो जो डिजायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिजायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आरसेल्व्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग, थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान हैं। आप कभी पहाड़ों पर अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पे, वहां जा करके देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है, वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, यही सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूँ, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ, बाहर में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेंगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में चार पांच लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, और भी इस तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई, मान लो 30 साल है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है, इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए,
और क्या है, और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को मैं एज इट इज देख रहे हैं, सोच रहे हो ना ये वो ये। एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है, वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट, कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना? मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना? हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है। मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक ही 1 सेकंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में 1 सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है, वो फेलियर में 1 सेकंड का फर्क है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में 1 सेकंड का फर्क है, ठीक है ना? जैसे वो बदला, थॉट बदल गया, तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के, मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़े। थॉट से किसको जोड़े? कोई काम करने को, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा, खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, बढ़िया है, बुरा नहीं है। वो किससे आएगा? थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा। एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है। खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा, हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है। जब सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी लोग आकर के जुड़ जाएंगे आपके साथ में जो आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे, और वो अपने मतलब के लिए आपको यूज कर रहे होंगे, आपका टॉर्चर कर रहे होंगे, तो वो तो मिल गया जो चाहिए था, वो वाला थॉट तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में सफरिंग भी तो आ गई ना, वो वाले थॉट्स भी तो आ गए। हम ये चाहते हैं कि हमको ये तो मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े, पाने के लिए खोना भी तो पड़ेगा, तो जब वो खोगे तो उससे रिलेटेड भी तो थॉट्स आएंगे, तो खुश कैसे हो गए? तो अगर हिम्मत है तो इस सच को देख लो, अगर देख सकते हो तो, नहीं देखना आपकी चॉइस है, कि थॉट के लेवल पे खुश होना इम्पॉसिबल। तो अब क्या करें, कैसे खुश होएं? क्या कोई और रास्ता भी है खुश होने का? क्योंकि तो लोगों को तो यही नहीं पता है कि बिना थॉट के क्या होता है, थॉट क्या होता है। एक बात बताओ, आप यहां पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है। देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए सोचने की जरूरत है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है। जब काम करना है तो थॉट चाहिए, ऑफिस में थॉट चाहिए, वहां पे खाली नहीं बैठ सकते, पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है,
तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो। खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है। करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं। तो कैसे खुश होगे बिना करे? सब कुछ अपने आप होता रहे, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? We don't need thought to be happy. ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा। अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा।

0: तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है कि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है, ये वो, ठीक है, तो थॉट को उसी के लिए यूज करो और पूरी पावर के साथ करो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं। थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हो जाएगा? आई बात समझ नहीं आई? कुछ भी हो जाए, ब्रेथ तो फिर भी चलेगी। और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं, मेरे होने के ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा। फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं, इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, हाँ घूम जाओगे, वो सब नहीं। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो मेरी इस बात को, कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कब ये देख सकते हो कि अगर आप अपने घर की छत पे लेटे हुए हो और ऊपर बादलों की तरफ देख रहे हो, तो कब इस सच को आप एज इट इज देख सकते हो और समझ सकते हो कि सब कुछ मुझ में है?
1: Thoughtless mind is key of happiness.
0: Thoughtless mind is key for happiness, but what is thoughtless mind? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? थॉट से ये देखना कि थॉट की क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब आप थॉट से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक वेजिटेबल के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि थॉट खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, ये बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है। थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश, मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर। तो थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है। बट अगर हम समझ जाएं इसको कैसे यूज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके, उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा, आप रोओगे, फूट फूट करके रोओगे, दुखी नहीं होगे। दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट, आने दो, दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे, बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं? थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्या घोचू बनती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं, डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर पकड़ पाओगे या नहीं। आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो कि फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं।
2: सर थॉट्स हमारे एक्शन को डायरेक्ट करते हैं ना सर, मतलब
0: ऑब्वियसली ये जो थॉट्स हैं इसका कनेक्शन किससे है? थॉट्स का एक्शन से, इससे, उससे, सारी चीजों, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा,

एक्शन का किससे कनेक्शन है? एक्शन का हैप्पीनेस से कनेक्शन है ना जी। आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो। बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के। आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम। आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम करते रहना, सक्सेस तो चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही है। गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है, गानों को सुनने को तैयार नहीं है आपका, करो क्या करोगे, हो गए ना दुखी। आपको ये समझ आए कि बाहर की दुनिया में मेरी जो जरूरतें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल है। हम क्या गलती कर रहे हैं, अपनी जरूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है, यही कर रहे हो आप गलतियां। क्या कभी बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक रहे हो अकेले? कभी नहीं। तो डर लगता है ना, मेरे से ये चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो गुलाम नहीं हो आप चीजों पे। तो सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए

खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो खेतों में चले जाओ जाके, बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, खाना खिला देगा, हाँ डीजे खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए, मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए, आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई वॉन्ट, एज मच एज आई कैन, एट द सेम टाइम आई हैव द कैपेसिटी टू लिव विदाउट मनी। फियरलेस हो गए ना। ये दो एक्सट्रीम होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते, अपने आप को कैपेबल बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर जीरो से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है। ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी भी आंखों में डर नजर आता है। तो पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, डरे हुए। तो कैसा अपने आप को बना दो, एक तरफ से वो कैसे बनेगा, थॉट से बनेगा, और कैसे बनेगा, मतलब खुश रह के तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा जी। थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया वो किया, वो किस लिए कर रहे हो आप, अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए। लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ

0: कमाल का बनाने में, और बाकी टाइम क्या किया, थॉट को छोड़ छोड़ के बैठे हुए हो। थॉट की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप देखोगे किसी को भी, तो उस देखने में प्यार होगा और कुछ नहीं होगा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस शानदार ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

जब एक तरफ इतनी गर्मी होना और दूसरी तरफ बस फ्री के आम मिल जाए तो कौन नहीं खाना चाहेगा उन आम को। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई आज इंडिया की नहीं, आज इंडिया से थोड़ा बाहर चलकर बात करते हैं, यानी कि आज बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर लगी है आम की महफिल। हम इंडियंस जहाँ भी जाते हैं अपना जायका साथ उठा कर ले जाते हैं। सो अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक यूनिक मैंगो पार्टी ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया। सो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ये मैंगो पार्टी, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में हो रही है। अगर इस इवेंट की बात करूँ तो इस इवेंट में लोगों को इंडिया की फेमस मैंगो वेराइटीज का फ्री टेस्टिंग एक्सपीरियंस दिया गया। और इतना ही नहीं, जब ये पार्टी शुरू हुई और लोगों ने टेस्ट किए ना मैंगोस, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके वहां पर जमा हो गए सिर्फ और सिर्फ मैंगो टेस्ट करने के लिए। बिकॉज अगर बात करें ना तो इस पार्टी में बहुत वैरायटी के मैंगो आए थे, जैसे अल्फेंजो मैंगो, केसर मैंगो, इसके साथ दो चार वैरायटीज और आई थी। और इन आमों की जो मिठास है ना और जो फ्लेवर है, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। और अगर मैं आम और इंडिया की कनेक्शन की बात करूँ ना तो बहुत ही पुराना कनेक्शन है। इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो प्रोड्यूसर माना जाता है और यहाँ आम सिर्फ फ्रूट नहीं एक इमोशन भी है। बिकॉज अगर गर्मियों की बात करें ना तो गर्मियां आती ही ना हम आम की बहुत सारी वैरायटीज खाते हैं, कहीं आम रस, आम पन्ना, मैंगो शेक, आम का अचार तो एवरग्रीन है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आम को और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है। सो अगर हम इंडियंस अपनी बात करें ना तो हमारे लिए ना हर चीज में इमोशन है। सो इंडिया में समर का मतलब वेकेशन नहीं, आम होता है, ये तो हम सबको पता है। और अब तो शायद बाहर देश को भी ये बात पता चल गई है कि आम खाना है तो इंडिया का खाना है। और लगता है अभी आम प्यार सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में फैल रहा है। और धीरे धीरे करके देखते हैं ये इंडियन आम कहाँ तक पहुँचता है। तब तक सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, मल्टीप्लेक्स म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो
3: इरशाद।
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड की होना तो भाई यहाँ पर नेगोशिएशन करना बहुत टफ होता है, लेकिन अपनी इंडियन मॉम्स सुपर मॉमी तो भाई इनके सामने तो एचआर भी वीक पड़ गया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस पे मैं लेकर आ गई हूँ आज का सोशल स्यापा। सो स्यापा ये है कि अप्रेजल मीटिंग में हो गई सुपर मॉमी की एंट्री, यानी कि सोशल मीडिया पे ना इन दिनों एक फनी सटायर वायरल हो रहा है जिसमें गुरुग्राम के एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी अप्रेजल मीटिंग में अपनी मम्मी को बुलाया। सो भाई मम्मी ने यहाँ पर ऐसी नेगोशिएशन की ना कि सैलरी हाइक के साथ साथ ना प्रमोशन भी मिल रही है। तो भाई ये स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर और वायरल स्टोरी का हाईलाइट सामने आया और हाईलाइट ये है, मेरा बेटा डेडलाइन की वजह से

खाना नहीं खाता, आपको पता है, और आप उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे। HR पॉलिसीज वर्सेस इंडियन मॉम इमोशंस बहुत जोरों पर थे इस वीडियो के अंदर नजर आए। अप्रेजल मीटिंग बन गई सब्जी मंडी स्टाइल बार्गेनिंग। सो भाई यही होता है। तो भाई जितने भी आज मुझे ऑफिस वाले सुन रहे हैं, जितने भी मुझे बॉस सुन रहे हैं ना, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने एम्प्लॉय की मेहनत का पैसा तो उसे दीजिए ना। जो मेहनत आपको नहीं दिखती ना, वो घर में मम्मी को दिख जाती है। सो ये स्टोरी कम्प्लीटली सटाया है, मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन के लिए। सो अगर इंडियन मॉम्स की बात करूँ ना, तो वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो कॉर्पोरेट डील्स भी क्लोज कर सकती है। और ऑनेस्टली भाई, सुपर मॉमीज का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर होता है। तो माय डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस भी आपको दुखी कर रहा है ना, तो आज अपनी मम्मी को लेकर जाइए ऑफिस में और बस बात करा दीजिए मम्मी से कि सैलरी हाइक भी हो जाएगी और आपके बॉस को थोड़ा सा आपसे डर भी लग जाएगा। वेल, सो इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया एक म्यूजिक ब्रेक लेने का। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महाराज में मॉर्निंग एक्सप्रेस शो। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: सचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हाँ?
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

लगता है ये जो दिल्ली एनसीआर के और नॉर्थ इंडिया के लोग है ना, सिर्फ इन्हीं को गर्मी लगती है। यही रीजन है कि इनकी गर्मी को दूर भगाने के लिए ना इन सबका जीपीएस सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है, वो है पहाड़। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री, आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो भाई, गर्मियों से परेशान होकर ना लोग पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनसे अब पहाड़ भी परेशान हो गए हैं। बिकॉज अगर बात करें ना पहाड़ों की, तो मैदानी इलाकों में उस टाइम पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है, और इस वजह से हजारों लोग वीकेंड और समर वेकेशन के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि मनाली, रोहतांग, नैनीताल, औली और बद्रीनाथ, इन सभी डेस्टिनेशंस पर गाड़ियां चल कम और रिंग ज्यादा रही है। अब आप इस बात से तो समझ ही गए होंगे कि इतना ज्यादा ट्रैफिक लग गया है पहाड़ों पर कि पहाड़ों को भी सांस नहीं आ रही है, और यहाँ से हम जा रहे हैं पहाड़ों पर खुली सांसें लेने के लिए। फिर ये सब पता होने के बावजूद भी ना हम रुक नहीं रहे, हम जोरों शोरों से पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं। तो भाई, पहले तो ये जानिए कि हम पहाड़ों की तरफ जा क्यों रहे हैं। ठंडी हवाएं लेने, बर्फ के नजारे देखने, रेनी वेदर इंजॉय करने और सिटी की हीट से थोड़ी दूर। लेकिन आपको पता है, इस वक्त ना पहाड़ों पर ही कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बहुत लंबा किलोमीटर का जाम। सो माय डियर लिसनर्स, बस एक रिमाइंडर लेकर आई हूँ कि ट्रिप ना फिर कभी प्लान कर लीजिएगा, ये गर्मी एसी में बैठकर कम कर लीजिए, पहाड़ों का थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तो शायद हम हेल्दी रह पाएंगे। अगर गर्मी की बात करूँ ना, तो गर्मी का लेवल ऐसा है कि लोग सोच रहे हैं ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो भी चलेगा, बस एसी वाली हवा नहीं चाहिए। सो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रैवल टिप लेकर आई हूँ। सो आज की ट्रैवल टिप ये है, अगर आप भी पहाड़ों का प्लान बना रहे हैं तो होटल्स पहले से बुक कर लीजिए, ट्रैफिक अपडेट्स चेक करके ही पहाड़ों पर जाइए, और पेशेंस फुल टैंक में भर कर जाइएगा, सो दैट कि अगर आप ट्रैफिक में फंस भी जाए ना, तो आपको खुद पर गुस्सा ना आए कि क्यों ये ट्रिप बनाई। और यही कहना चाहते हो कि पहाड़ों में वेदर कूल है लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल भी कूल नहीं है। सो आपके मूड को कूल करने के लिए ही मैंने आपको आज ये अपडेट दी है, सो दैट कि आप फंस ना जाए पहाड़ों में। सो इन बातों का ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इसमें से ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर ये शो।

0: की नचले।
1: जहां सुबह की शुरुआत होती है फिटनेस और हेल्थ टिप्स के साथ, सुनना ना भूलिए मॉर्निंग एक्सप्रेस आरजे अंजलि के साथ।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इंसान के पास भी एक हिडन थड़ाई हो सकती है। कभी सोचा है इस बारे में? वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज हम बात करें एक हिडन थड़ाई की। नहीं नहीं, ये वो सुपर पावर वाली थड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन में एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर होता है। यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक टाइनी ऑर्गन होता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, और कभी कभी ना इसे बॉडीज थर्ड आई भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट और डार्कनेस के एक सिग्नल से जुड़ा बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर बात करें इस ग्लैंड की, तो ये ग्लैंड करता क्या है? सबसे पहले तो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी कि स्लीप अवेक साइकिल रेगुलेट करती है ये ग्लैंड, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को सपोर्ट करता है, एंड इस वजह से ये हमारे स्लीपिंग हैबिट्स और डेली रिदम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? रिसर्चर्स का मानना है कि स्ट्रक्चर की एवोल्यूशनरी रूट्स कैरोडन साल पुरानी हो सकती है, यानी कि कुछ रेप्टाइल से मिलती जुलती। और इतना ही नहीं, साथ ही एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन भी पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट एवोल्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा कितनी अमेजिंग है एक ह्यूमन बॉडी, जिसे सिर्फ बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदर बहुत सारी हिडन चीजें अपने अंदर रखी हुई है। सो नेचर की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी शायद हमारे अंदर ही छुपी हुई है, ये हमें रिसर्चर्स बताते हैं, और शायद इसलिए अच्छे स्लीप को हेल्थ की सुपर पावर कहा जाता है। सो माय डियर स्लीपी आउल्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो अपनी नींद जरूर पूरी कीजिएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हमें किसी चीज को देनी चाहिए ना, तो वो हमारी नींद है, बाकी सारे काम बाद में। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज का दिन, सुनते रहिए रेडियो महारानी 9.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लॉकडाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारे हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए, ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें?
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरिया है ना, वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना, वो हमको नहीं पता होता। कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे लगता है जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी

0: में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई की वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ, ताकि कोई भी चांसेस अगर वो बैक्टीरिया के रह गए हैं ना वो भी खत्म हो जाए। दूसरा, फ्राइड और जो आपके बाहर रोड साइड फूड होता है, मतलब देखो बहुत लोगों का बिजनेस है वो, देखो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, बट आपकी अपने शरीर के प्रति भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो स्ट्रीट फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो। अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो, बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो, उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉईल होने दो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना है तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉईल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबित काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज़ वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक ऑल्सो। हल्का सा अदरक की तीन चीजें उबालनी है, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया, छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद। बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है? अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप देख ना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी कर लूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव। अगर दो चीज सुनी है ना, एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
1: थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं। गर्मी में वही करें ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तभी आप स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका ही नेचुरली आपकी, और इसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी से पानी नहीं निकल रहा, जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी निकलते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, बट मेक श्योर कि आपकी हाइड्रेशन के फॉर्म अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ये चीजों को, यू नो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस हेल्दी ड्रिंक्स, जिसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है,
0: जी
1: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में। तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से, यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिनरल्स और वो सब निकल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब ऐड ऑन कर दो। हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खा के आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के तो मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को, तो आप इस तरीके से सब चीजों को ऐड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

Margie and Jaleel. इशानास ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं, बहुत सारी अपडेट्स मैंने आज आपको दी हैं और मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। बेसिकली सुबह 7 बजे आई थी और 10 बजने वाले हैं, तो भाई कल फिर से मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन तब तक मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
4: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
5: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी। 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से। हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में। जहाँ फरीदाबाद शहर की अगर बात की जाए तो उस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ, जहाँ पिछले दिन यही तापमान 37 तक पहुंचा हुआ था, आज गर्मी से काफी राहत नजर आ रही है। जहाँ पूरे दिन बारिश के आसार हैं, आज से लेकर वीकेंड पूरा बारिश का माहौल रहने वाला है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज नहीं तो कल तक जरूर दिल्ली एनसीआर में मानसून छाएगा और मानसून पहुंचने वाला है। वही मानसून से थोड़ा बहुत जो आसपास बारिश हो रही है, AQI भी कंट्रोल होता नजर आया, 67 मॉडरेट पर पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉलेजेस जहाँ रजिस्ट्रेशन डेट जो है 30 जून तक थी, अगर आप कॉलेज में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और अब पोर्टल बंद किया जा चुका है, जहाँ फिजिकल काउंसलिंग के दौरान एक बार फिर से पोर्टल नए आवेदन के लिए भी खोला जाएगा। वैसे इससे पहले 15 जून से 30 जून तक का टाइम फिर भी बढ़ाया गया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि शायद एक बार और रजिस्ट्रेशन ओपन किया जा सकता। जहां बात की जाए 10 जुलाई को पहली फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाने वाली है, यानी कि आज से लगभग 10वें दिन पहली मेरिट लिस्ट आएगी। अब बच्चों को इंतजार है मेरिट लिस्ट का, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इन 10 दिन में सिर्फ यही कशमकश रहने वाली कि रजिस्ट्रेशन होगा कर दिया, लेकिन अब कौन से कॉलेज की मेरिट लिस्ट में जाकर के नंबर आता है और कौन से में नहीं। लेकिन आप सबसे यही कहूँगा, देखिए जहाँ रजिस्ट्रेशन दोबारा भी कहा जा रही है ऑन वापसी कर दी जाने, अगर कोई रह गए हैं उन तक ये बात जरूर पहुँचा कि कब ओपन हो जाने वाली है, हालांकि आपको डिटेल्स वेबसाइट पर मिल ही जाने वाली हैं। बाकी ऐसी और भी चर्चाएँ मैं करता रहूँगा, उससे पहले एक और ट्रैक ओनली ऑन रेडियो हरा।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आगे।

0: सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी, यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों सिनेमा के गलियारे से बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूँ कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार। कुछ नई कहानियों की होंगी चर्चाएं तो कुछ होंगे नए ट्रेलर टीजर की अनाउंसमेंट। कौन सा टीजर धमाल मचाते नजर आया तो कौन से ट्रेलर में किरदारों को किया जा रहा है बाखूबी पसंद। हिंदी पट्टी से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक की कहानियां तो सिल्वर स्क्रीन से लेकर के ओजी प्लेटफॉर्म के किस्से होने वाले हैं आज के सिनेमा के गलियारों के मद्दे। पंजाबी इंडस्ट्री के गाने हो चाहे हॉलीवुड इंडस्ट्री का एक्शन और थ्रिल से भरपूर डबल डोज, ये सारी चर्चाएं आज सिनेमा के गलियारे से करने वाला हूँ। ना ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके और ये ट्रैक आप सभी के लिए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में रिलीज हुई कहानियों के बारे में। मैं वापस आऊंगा कि अगर यहाँ पे चर्चा की जाए, और साथ ही हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट के बारे में बात करें। यहाँ पे ये कहानियां कितना धमाल मचाती नजर आ रही हैं, कितनी कलेक्शन करते आ रही हैं। वैसे तो अगर बात की जाए मेकर्स के अकॉर्डिंग शायद उतनी कामयाब नहीं हो सकी। मैं वापस आऊंगा अगर डे 11 कलेक्शन की अगर बात करें, ग्रॉस नेट 2.5 करोड़ रुपये रहा, और इसे टोटल इंडियन नेट 26 करोड़, तो इंडियन ग्रॉस 31 करोड़ रुपये होता नजर आ। लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 70 करोड़ तक पहुंचता नजर आया है। और वहीं पे हॉन्टेड 3D की बात की जाए, टोटल इंडियन नेट 18 करोड़ रहा और इंडियन ग्रॉस 21 करोड़ रुपए रहा, जहां पर मैं वापस आऊंगा 31.97 करोड़ के साथ इस कहानी में, यानी कि इस पोजीशन में आगे बढ़ते हुए, यानी कि पहले पायदान पर होता नजर आया। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: ये जय माता जी। माता जी ने हम कहीं ने कहू के वहां फरे वादल फरे वायरो फरे पर एक बार बोलिया पी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्म में फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से मुकेश खन्ना साहब के बारे में, जहाँ अपने न्यू प्रोजेक्ट ज्ञानी कौन गंगू के शूट का BTS शेयर करते नजर आए, जिसमें वो गंगाधर लुक में दिख रहे हैं। ये शक्तिमान यूनिवर्स से इंस्पायर्ड एक शॉर्ट फिल्म है और इसे 22 साल बाद गंगाधर के रिटर्न जैसा फ्रेम किया जा रहा है। जी हाँ, फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं ये बात देखकर, जहाँ BTS स्टाइल में और सेट के ग्लिम्प्स दिखाता है। मुकेश खन्ना ने कैप्शन में गंगू को इंट्रोड्यूस किया और इसे गंगाधर की वापसी जैसा टीज किया। कहा जा रहा है कि दर्शन समित बंसल कर रहे हैं और मुकेश खन्ना इसके प्रोड्यूसर हैं। राइटर ब्रिजमोहन पांडे को भी प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा गया। 1990s के फैंस के लिए गंगाधर का रिटर्न नॉस्टैल्जिया हैवी मोमेंट है, क्योंकि शक्तिमान शो का ये कैरेक्टर काफी पॉपुलर था। अब देखना यह है कि नया मॉडिफाइड वर्जन यानी कि गंगू ऑडियंस को कितना पसंद आता है और कितना नहीं। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले का और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो बाहर रानी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी

जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब, फिर नहीं रह

शराबी। इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं इमरान हाशमी हॉरर जेनर में रू के साथ वापस आ रहे हैं और फिल्म को 2027 के लिए सेट किया गया ही एक म्यूजिकल हॉरर प्रोजेक्ट है जिसे मयंक शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी और कहा जा रहा है कि इमरान का हॉरर स्पेस में कमबैक है। लास्ट नोटेबल हॉरर एसोसिएशंस के बाद का काफी वक्त बाद ऐसा होने जा रहा। फर्स्ट लुक टीजर डिस्क्रिप्शंस ने विजुअल्स और चिलिंग एटमॉस्फेयर को हाईलाइट किया। ट्रेड कवरेज ने इसे म्यूजिकल हॉरर स्पेक्टेकल के तौर पर पोजीशन किया जहां इमरान की कमबैक हॉरर जेनर 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली है। रहेगा इंतजार इमरान के इस कहानी का। इनके अपोजिट कौन होगा वो भी आएंगी बहुत जल्द चर्चा है। बाकी चर्चा उतरेगी उससे पहले एक और ट्रैक।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फेवर। यहाँ दोस्तों बताते हैं सिनेमा के गलियारे से अब चर्चा मैं करता हूँ एक और बढ़िया कहानी के बारे में, जहाँ तुम्बा चू के मेकर्स ने मॉनसून सीजन में रियल रेनफॉल के साथ कुछ सीन्स शूट करने की प्लानिंग की है। कहा जाए कि प्रोडक्शन टीम महाराष्ट्र के अलग अलग लोकेशंस पर एक्चुअल मॉनसून एटमॉस्फेयर यूज करके फिल्म को और ऑथेंटिक लुक देना चाहते हैं। सब जानते हैं कि मॉनसून बस आ गया है और टीम का फोकस आर्टिफिशियल रेन के बजाय नेचुरल मॉनसून कंडीशन पर था, ताकि फिल्म का हॉरर फैंटेसी मूड और ग्राउंडेड लगे। इसलिए शूट्स प्लान्स वेदर के हिसाब से एडजस्ट किए गए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सोहम शाह वाली सीक्वल प्रोजेक्ट है, जिसे पहले एलाबरेट सेट्स और लार्ज स्केल क्राउड सीक्वेंस के लिए डिस्कस किया जा चुका है। देखते हैं तुम्बाड़ में क्या कुछ खास लेकर आएंगे नेचुरल सीन्स के साथ, बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्रैक

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लिबरेटी शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिनेमा के गलियारों से एक और खूबसूरत कहानी के बारे में। अर्जुन दास ने कहा कि ओजी 2 में वो जरूर शामिल होना चाहता है और अगर पवन कल्याण या अन्ना उन्हें कॉल करते हैं तो वो बिना हेजिटेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने क्लियर किया कि सीक्वल के टॉक्स अबाउट अर्ली स्टेज में है और शूट स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम अभी फाइनल नहीं हुआ। अर्जुन दास का कहना है कि फर्स्ट पार्ट में उनका करेक्टर स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए सीक्वल में भी उनकी प्रेजेंस लॉजिकल लगती है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई, ओजी 2 को फैंस की डिमांड के बाद अनाउंस किया गया। सुजीत के अब्रॉड से लौटने के बाद फर्दर प्लान्स डिस्कस होंगे, इसका मतलब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है बट कास्ट डिटेल्स अभी फ्लूट नहीं है। इंतजार रहेगा ओजी 2 की फुल एंड फाइनल कास्ट के बारे में, बाकी चर्चाएं होंगी उससे पहले एक और ट्रैक।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ठीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख।
1: हाथ पकड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा,
0: सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं और बढ़िया कहानियों के बारे में, जहाँ आप सब जानते हैं कि आए दिन कुछ नई कहानियां तो कुछ नए गाने रिलीज होते नजर आते हैं। वही कहानियां गानों में कुछ नए स्टार्स हैं तो कुछ नए किरदार कुछ नए अंदाज में।

बात करें यहाँ पे कोरियन फिल्म्स के बारे में, जहाँ आप सब जानते हैं आजकल कोरियन फिल्म्स का एक अलग ही ट्रेंड चला हुआ है। कोरियन फिल्म्स देखने वालों की तादाद बड़ी है, तो अगर बात की जाए तो हिंदी सिनेमा जगत से, टीवी स्टार्स से यहाँ पे एक नई एंट्री होती नजर आने वाली है कोरियन फिल्म्स में। जी हाँ, बात करें टीवी स्क्रीन की एक बहुत ही बेहतरीन चेहरा जो कि आगे बढ़ते हुए यंग स्टार्स में नाम शामिल होता, जिसका नाम है अनुष्का सेन। अनुष्का सेन पहली ऐसी इंडियन एक्टर बनने वाली जो कि साउथ कोरियन फिल्म में जेजू ओले में आए के किरदार में दिखने वाली है। यहाँ जेजू ओले रोल करके हिस्टोरी क्रिएट करने वाली है। वो रिपोर्टली कोरियन प्रोडक्शन में या इंडियन एक्टर बन रही है। फिल्म का सेटअप रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है जो जेजू आइलैंड को बैकड्रॉप पर सेट करता है। और देखते हैं अब ये इतना बेहतरीन मौका मिला इंडियन स्टार को तो कितनी अच्छी खासी प्यार बटोरती नजर आएंगी अनुष्का सेन। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं अब सिनेमा के कलंदर में आज बड़े उस एक्ट्रेस का और टेलीविजन पर्सनैलिटी का जो छोटे पर्दे से अपनी पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड तक का सफर तय किया। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा अपनी कॉन्फिडेंस स्टाइल और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जानी जाती है। वीजे होस्ट एक्ट्रेस और डिजिटल क्रिएटर हर रोल में उन्होंने खुद को नए अंदाज में पेश किया। ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का आज बर्थडे है जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। जरा आप भी सोचिए कि कौन है वो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ छोटे पर्दे से एक बेहतरीन स्टार बनते हुए जो नजर आई बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलाता हूँ कुछ खूबसूरत से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करें सिनेमा के कलंजर में रिया चक्रवर्ती के बारे में, जहाँ रिया ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन के एक रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के रूप में की। फिर वहां आने के बाद उन्हें वीजे और होस्ट के तौर पर काम किया। उनकी एनर्जेटिक पर्सनालिटी और कैमरा कॉन्फिडेंस ने उन्हें यंग ऑडियंस के बीच पॉपुलर बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा बनी। उनका सफर दिखाता है कि टेलीविजन से सिनेमा तक का रास्ता मेहनत और लगातार सीखने के तय किया जा सकता है। रिया ने कई फिल्मों में काम किया जिनमें मेरे राज की मारुति, सोनाली केवल, हाफ गर्लफ्रेंड, चेहरे जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल। रिया ने एक्टिंग के साथ साथ पॉडकास्टिंग और मोटिवेशनल कन्वर्सेशन के जरिए भी अपनी एक नई पहचान बनाई। उनका फोकस सेल्फ ग्रोथ और पॉजिटिव थिंकिंग पर भी रहा है। ऐसे उनके बारे में और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी यहाँ बात करते हैं जिंदगी में हर कलाकार का सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। रिया चक्रवर्ती का सफर भी मुश्किलों से भरा था लेकिन उन्होंने पब्लिक लाइफ में अपनी मौजूदगी और काम को जारी रखा। आज वो अपनी इंडिविजुअलिटी और कॉन्फिडेंस नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। रिया की कौन सी फिल्म या टीवी अपीयरेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया या होस्ट या विजय बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी अजीब चर्चा होती रहेंगे लेकिन आज नहीं आपसे मुलाकात होगी कल के दिन से। करवा दी बात है तब सुनते रेडियो महारानी।

0: अपना KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखने दो।
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो।
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए खुली।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना पावन भी है, मिले जे कोई चाहता है।

बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स एंट्री मारते ही सुपरस्टार बन जाते हैं और कुछ सालों तक ऑडियंस के दिल में क्वाइटली जगह बनाते रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की, जो दूसरे वाले एक्टर हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। पंजाब का एक सिंपल लड़का जिसका असली नाम था जसजीत सिंह गिल, ना फिल्मी बैकग्राउंड ना इंडस्ट्री कनेक्शन, बस एक काम फेस और आंखों में मोस्टली ऑनेस्टी। 1996 फिल्म माचिस, गुलजार की फिल्म सीरियस सिनेमा, और उस फिल्म में एक यंग जिमी शेरगिल, रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट रियल। फिर आई एक फिल्म जिसने उनकी इमेज हमेशा के लिए चेंज कर दी, मोहब्बतें, राज आर्यन का वायलिन और उसके सामने एक इनोसेंट लवर करण। जिमी शेरगिल स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं करते थे, वो बस नेचुरली फील होते थे। और कैसे बने वो सबकी फेवरेट, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: ये बॉलीवुड का सबसे अजीब रूल है, ऑडियंस आपको प्यार कर सकती है फिर भी इंडस्ट्री आपको सुपरस्टार नहीं बनाती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन चॉकलेट बॉय जिमी शेरगिल की। मोहब्बतें के बाद सबको लगा ये नेक्स्ट बिग रोमांटिक हीरो है। लुक्स थे, चार्म था, एक्टिंग भी थी, लेकिन 2000s का बॉलीवुड अलग था। वहां लाउड हीरोज चल रहे थे, जिमी सटल थे, रियल थे, और शायद इसी वजह से वो रेस में पीछे रह गए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, ऑडियंस का ट्रस्ट। चाहे मेरे यार की शादी है हो या फिर तनु वेड्स मनु, स्क्रीन पर आते ही फील आता था ये बंदा जेन्युइन है। जिमी शेरगिल को लोगों ने कभी वर्शिप नहीं किया, लेकिन कभी इग्नोर भी नहीं किया। शायद इसीलिए वो आज भी किंग होकर भी किंग नहीं है। करेंगे जिमी शेरगिल के बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।
1: पाका छोड़ दूं किसे

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

बॉलीवुड हिस्ट्री में शायद कोई एक्टर इतनी बार ऑलमोस्ट सुपरस्टार नहीं बना जितनी बार जिमी शेरगिल बने थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। ऑलमोस्ट बिगेस्ट रोमांटिक हीरो, ऑलमोस्ट टॉप स्टार, ऑलमोस्ट लीड एक्टर एवरीवन रिमेंबर्स। और फनी बात, उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया, वो साइड रोल्स भी सेम सिंसेरिटी के साथ करते थे। और फिर इंटरनेट ने एक जोक बना दिया, जिमी शेरगिल हर मूवी में लड़की लूज कर देता है। ऑडियंस हंसी, लेकिन उस जोक के पीछे एक स्ट्रेंज सच्चाई भी थी। जिमी का ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी ही ऐसा था, सॉफ्ट, लॉयल, अंडररेटेड। वो बॉलीवुड के हीरो कम ऑडियंस के दोस्त ज़्यादा लगते थे। और कैसे पंजाब ने उन्हें दिया दूसरा क्राउन, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप लोग सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जब बॉलीवुड ने जिमी शेरगिल को पूरी तरह सेलिब्रेट नहीं किया, तब पंजाबी सिनेमा ने उन्हें किंग बना दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। और जिमी शेरगिल ने भले ही फिल्म माचिस में अपना रोल निभाया हो अच्छे से या फिर मोहब्बतें में, मगर उनको असली क्राउन पहनाया पंजाबी सिनेमा ने। जिमी शेरगिल ने पंजाबी फिल्म्स में एंट्री ली और वहाँ पिक्चर ही बदल गई। मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, दाना पानी, यहाँ ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं स्टार ट्रीट किया। और इंटरेस्टिंग बात, जिमी कभी ओवर द टॉप पंजाबी हीरो भी नहीं बने थे। उनका स्टाइल वही था, कंट्रोल्ड, क्लासी, नेचुरल। बॉलीवुड में वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड थे, लेकिन पंजाब में रिस्पेक्टेड रॉयल्टी। और शायद इसीलिए पंजाब सिनेमा में आज भी जिमी को किंग कहा जाता है। और इसी के साथ साथ कैसे जिमी के रूट्स आज भी लोगों के दिलों में घर बसा गए हैं, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ एक्टर्स ट्रेंड करते हैं, कुछ एक्टर्स टाइम सर्वाइव करते हैं। जिमी शेरगिल सर्वाइव नहीं हुए, वो साइलेंटली रेलेवेंट रहे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। बॉलीवुड एक फास्ट इंडस्ट्री है, यहाँ हर फ्राइडे नए फेसेस आते हैं, नए स्टार्स, नए इन्फ्लुएंसर्स, नए नेक्स्ट बिग थिंग। और इस नॉइज के बीच में एक एक्टर है जो कभी लाउडली अटेंशन डिमांड नहीं करता। नाम है जिमी शेरगिल। ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज, ना फेक लार्जर देन लाइफ इमेज, ना सोशल मीडिया पर ओवर ब्रांडिंग। फिर भी जब भी उनका नाम आता है, ऑडियंस के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिमी शेरगिल सिर्फ एक्टर नहीं लगते, वो रियल इंसान लगते हैं। उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, कभी हार्ट ब्रोकन लवर, कभी इग्नोर्ड हस्बैंड, कभी लॉयल दोस्त, कभी वो बंदा जो एंड तक सब सही करने की कोशिश करता रहता है। और शायद इसीलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी मोस्ट पीपल आरंट अल्फा हीरोज, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग, एग्जैक्टली लाइक जिमी कैरेक्टर। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जिमी शेरगिल कभी सीन स्टील करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन समहाउ वो याद रह जाते हैं। तनु एड्स मनु में देखो, जब मूवी में केओस था, कॉमेडी थी, लाउड कैरेक्टर्स थे, लेकिन जिमी का कैरेक्टर काम, मैच्योर और हर्ट, और ऑडियंस साइलेंटली उसके साइड पर थी। इंटरनेट ने मीम्स बना दिए, हर मूवी में जिमी शेरगिल की बंदी चली जाती है। फनी था, लेकिन उस जोक ने उन्हें और रिलेटेबल बना दिया, क्योंकि ऑडियंस को लगा ये बंदा हम जैसा अनलकी है। और ऑनेस्टली किसी एक्टर के लिए ये बहुत रेयर चीज़ होती है। पीपल डोंट जस्ट वॉच हिम, पीपल फील बैड फॉर हिम। पर पंजाबी सिनेमा में उन्होंने जो रिस्पेक्ट अर्न की, वो भी ओवरनाइट नहीं आई थी, सालों लगे, कंसिस्टेंसी लगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईगो कंट्रोल। कई एक्टर्स जब लीड हीरो फेज से बाहर आते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन जिमी शेरगिल उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी डिग्निटी के साथ किए, नेगेटिव शेड्स भी किए, कॉमेडी भी की, सीरियस रोल्स भी किए, वो अडेप्ट करते गए। और यही डिफरेंस होता है फेमस एक्टर और लास्टिंग एक्टर में। आज अगर आप किसी भी एज ग्रुप के मूवी लवर से पूछो जिमी शेरगिल कैसे लगते हैं, तो उनका आंसर यूजुअली सेम होता है, अंडररेटेड, अच्छा एक्टर है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। और किसी एक्टर के लिए ये रिस्पेक्ट बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि स्टारडम टेम्पररी होता है, लेकिन गुडविल वो सालों साल चलती है। जिमी शेरगिल ने शायद बॉलीवुड का बिगेस्ट थ्रोन कभी नहीं जीता, लेकिन उन्होंने एक और रेयर चीज जीती, ऑडियंस का ट्रस्ट। और फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर फेमस हो सकता है, लेकिन हर एक्टर अपना सा नहीं लग सकता। तो ये थी जिमी शेरगिल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। अभी फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड। और आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनना नहीं चाहते बल्कि उनके पीछे की कहानी भी जानना चाहते हैं। आप सोचिए, जब आप सुबह अपनी चाय बनाते हो, मिल्क का ग्लास निकालते हो, क्या कभी सोचा है कि ये दूध का ग्लास आपके टेबल तक कैसे आया? दूध सिर्फ दूध नहीं है, ये सिस्टम है, ये एक नेटवर्क है, लाखों लोगों की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा है। और इसी सिस्टम को बनाने के लिए एक इंसान ने पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया। पर शुरू शुरू में वो इंसान सिर्फ एक शहरी लड़का था, एक फॉरेन डिग्री के साथ, जिसको लाइफ ने एक छोटे से गांव में भेज दिया। इमेजिन कीजिए, शहर का लड़का कंफर्टेबल लाइफ का सपना लेकर एंड सडनली एक गांव में आ जाता है जहां रोड्स खराब, कम्युनिकेशन लिमिटेड और फैसिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो, और रहने के लिए एक छोटा सा इनको गैराज मिलता है। शुरू में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, डाउट, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सोचा, काश मैं शहर में होता, बड़ी कंपनी में होता। लेकिन जब वो गांव के किसानों को देखने लगता है, उनकी रूटीन लाइफ को समझने लगता है और उनका स्ट्रगल सुनता है, तब एक चीज क्लियर होती है। प्रॉब्लम दूध का नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम का है। ये आदमी समझता है कि अगर सिस्टम को सही डायरेक्शन में लाएंगे तो पूरा देश चेंज हो सकता है। और वहीं से शुरू होती है ये कहानी, जो सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं बल्कि सोशल रेवोल्यूशन की कहानी बन जाती है। मैं अक्सर स्टार्टअप्स और बिजनेस की बात करती हूँ, तो आज मैं आपसे सबसे पहले पूछती हूँ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टर्नओवर है, कितनी फंडिंग मिली? पर ये कहानी नंबर्स के पीछे की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंटेंट के पीछे, पर्पस की कहानी, और एक ऐसे आदमी के डिसीजन के पीछे जिसने पूरे देश का ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये इंसान खुद को हीरो नहीं मानता, वो बस गलत के खिलाफ खड़ा होता है। सोचिए, अगर आप एक छोटी सी कम्युनिटी में जाते हो और वहाँ लोग रोज 4 बजे सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें फेयर प्राइस नहीं मिलता, आप क्या कहेंगे? तो इसी इंसान ने डिसाइड किया वो सिस्टम को चेंज करेगा, और वही सिस्टम चेंज करने का थॉट एक मूवमेंट में बदल गया। गांव का गैराज, सिंपल टूल्स और डिटर्मिनेशन, यही थी इसकी फाउंडेशन, जो आगे चलकर नेशनल रिवॉल्यूशन बनने वाली थी। तो कहानी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वंस अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड. और मैंने आपको एक सवाल पर छोड़ दिया था. एक शहरी लड़का फॉरेन डिग्री के साथ गांव के एक डेयरी गैराज में रह रहा था. फ्रस्ट्रेशन थी, कंफ्यूजन भी थी, लेकिन उस कंफ्यूजन के अंदर कहीं ना कहीं एक आइडिया जन्म ले रहा था. तो आज इस कहानी के नाम को आपको बताने का टाइम आ गया है. लेकिन सीधा नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सोच है. सोचिए इंडिया 1940 से 50 का दौर. देश नया नया आजाद हुआ है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट जीरो, और मिल्क सिर्फ एक लग्जरी माना जाता था. गांव का किसान तो जैसे दूध उगा रहा था, लेकिन फायदा कोई और उठा रहा था. मिडिल मैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट डेयरी सब अपना हिस्सा लेते थे, और जो सबसे ज्यादा मेहनत करता था वो सबसे कम कमाता था. और यहीं से एंट्री होती है एक आदमी की, जो सिर्फ इंजीनियर नहीं था, वो सिस्टम इंजीनियर बन गया. इस आदमी का मानना था प्रॉफिट पहला नहीं है, पहले पावर फार्मर्स के हाथ में होनी चाहिए. और अब वक्त है इस कहानी के हीरो के नाम को बताने का, डॉक्टर वर्गीस कुरियन. हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें आज पूरी दुनिया व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर के नाम से जानती है. पर जब ये कहानी शुरू हुई थी तब ना कोई रेवोल्यूशन था, ना कोई ब्रांड, ना कोई सक्सेस टैग. सिर्फ एक जॉब थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, सिर्फ एक गाँव था जो उन्हें अपना नहीं मानता था, और सिर्फ एक दिल था जो इनजस्टिस देखकर चुप नहीं रह सकता था. डॉक्टर कुरियन अमेरिका से मास्टर्स करके इंडिया लौटे थे. सपना था बिग सिटी, बिग कंपनी, बिग लाइफ. लेकिन स्कॉलरशिप के कॉन्ट्रैक्ट ने उन्हें गुजरात के आनंद गांव भेज दिया, एक छोटा सा डस्टी टाउन, जहां न रहने की जगह थी, न सोशल लाइफ, न कम्फर्ट. यहाँ तक कि इन्हें घर भी नहीं मिला. इसीलिए डॉक्टर कुरियन डेयरी के गैराज में रहते थे, और यहीं से इस गैराज में इंडिया के सबसे बड़े मोमेंट्स की नींव पड़ने वाली थी. डॉक्टर कुरियन डेयरीज की पुरानी मशीन से लड़ रहे थे, लेकिन असली फाइट मशीन से नहीं थी, फाइट थी सिस्टम से. इन्होंने देखा किस तरह किसान अपना दूध बेचते हैं और उसका कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहता. इन्होंने देखा किस तरह किसान मजबूर है, और मजबूरियां बिजनेस मॉडल बन चुकी हैं. और यहीं डॉक्टर कुरियन ने एक डिसीजन लिया, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन. इन्होंने सोचा अगर मिल्क पे फार्मर्स का कंट्रोल होगा तो उनकी जिंदगी बदलेगी. और यहीं से एक नया आइडिया जन्म लेता है, कोऑपरेटिव मॉडल. और इस आइडिया को सपोर्ट मिला एक और विजनरी से, त्रिभुवन दास पटेल. पटेल और कुरियन, एक लीडर, एक इंजीनियर, दोनों का गोल एक ही था, फार्मर्स फर्स्ट. और फिर एक ब्रांड का जन्म हुआ. इस ब्रांड का नाम रखा गया अमूल. अमूल जो अमूल्य से आया, यानी कि प्राइसलेस. पर सच कहूँ अमूल सिर्फ ब्रांड नहीं है, अमूल एक मैसेज है. मैसेज ये है कि अगर क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस फेयर हो तो सिस्टम कभी फेल नहीं होता. डॉक्टर कुरियन के लिए अमूल का मतलब प्रॉफिट नहीं था, अमूल का मतलब था ओनरशिप. किसान का अपना ब्रांड, किसान का अपना डिसीजन, किसान की अपनी आवाज. और यहीं से जो शुरू हुआ वो सिर्फ डेयरी बिजनेस नहीं था, वो एक मूवमेंट था. एक मूवमेंट जो अगले कुछ सालों में इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनाने वाला था. लेकिन ये जर्नी स्मूथ नहीं थी, अपोजिशन थी, इंटरनेशनल प्रेशर था, लोकल पॉलिटिक्स थी, और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा नहीं था कि गांव के किसान सिस्टम चला सकते हैं. पर डॉक्टर कुरियन ने भरोसा रखा, और इस भरोसे ने ऑपरेशन फ्लूट को जन्म दिया. लेकिन ये ऑपरेशन फ्लूट कैसे बना, कैसे मिलियंस ऑफ फार्मर एक नेटवर्क बने, और कैसे एक आदमी ने पूरे देश का मिल्क मैप बदल दिया, ये सब मैं बताऊंगी आपको. लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन कॉन्टैक्ट फोटो सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में, जिन्होंने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम रखा गया अमूल। तो आज हम उनके टाइटल्स, उनके अचीवमेंट्स और उनके अवार्ड से पहले जाएंगे। तो आज हम मिलेंगे एक बच्चे से जो केरला के एक छोटे से नॉर्मल गांव में पैदा हुआ, जिसके माता पिता ने शायद कभी नहीं सोचा कि उनका बेटा पूरे देश का फ्यूचर डिजाइन करेगा। 26 नवंबर 1921, केरला, एक मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली, नाम रखा गया वर्गीस। ग्रीक मीनिंग होता है फार्मर। आयरनी देखिए, नाम फार्मर और डेस्टिनी भी वही। वर्गीस कुरियन का बचपन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। स्कूल, पढ़ाई, डिसिप्लिन, इनके फादर सिविल सर्वेंट थे, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्ड, एजुकेशन को सबसे ऊपर रखने वाले, और माँ क्वाइट स्ट्रेंथ और जो बोलती कम थी पर वैल्यूज बहुत ज्यादा देती थी। ये वही वैल्यूज थी जो बाद में कुरियन के डिसीजंस में देखी गई। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स। कुरियन पढ़ने में अच्छे थे, साइंस उनका कंफर्ट जोन था, लॉजिकल माइंड और सवाल पूछने की आदत। इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी और फिर मिला एक गोल्डन चांस, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अमेरिका जाने का, मास्टर्स इन डेयरी इंजीनियरिंग। इमेजिन कीजिए 1920 से 30s का इंडिया और एक इंडियन लड़का फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अमेरिका में मशीन्स मॉडर्न थी, सिस्टम स्मूथ था और लाइफ कंफर्टेबल। यही कुरियन ने सोचा, डिग्री कंप्लीट करते हैं, मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, बिग सिटी बिग लाइफ। लेकिन लाइफ ने यहाँ पर एक क्लॉज ऐड कर दिया। स्कॉलरशिप की एक कंडीशन थी, इंडिया वापस जाकर गवर्नमेंट सर्विस देनी होगी, और वही कंडीशन कुरियन को आनंद गुजरात ले आई। अब यहाँ से रियल स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कुरियन के लिए आनंद कल्चर शॉक था। शहर का एजुकेटेड लड़का, गांव की मिट्टी, बैड रोड, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज और आउटडेटेड मशीन्स, और सबसे बड़ी बात, वो अकेला था, नॉन वेजिटेरियन क्रिश्चियन, डिफरेंट लाइफस्टाइल। लोग हेजिटेट करते थे रूम देने से, और इसीलिए कुरियन रहने लगा डेयरी के गैराज में। सोचिए, अमेरिका की लैब से सीधा डेयरी गैराज। डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियस था, गुस्सा भी था, रिग्रेट भी था। इन्होंने कई बार सोचा, बस ये बॉन्ड खत्म हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा जल्दी। और शुरू में इन्होंने सिर्फ काम किया, दिल नहीं लगाया, मशीन्स रिपेयर करते रहे। लेकिन फिर एक चीज ने इनका फोकस बदल दिया, गांव के किसान। रोज सुबह उनसे मिलना, उनका चेहरा देखना, उनके हाथ जो काम से घिस चुके थे, और फिर उनकी बातें सुनना, कैसे उनका दूध सस्ते में लिया जा रहा था, कैसे प्रॉफिट कोई और कमाता है, और कैसे सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा होता है। यही कुरियन के अंदर का इंजीनियर जागा, पर ये टेक्निकल इंजीनियर नहीं था, ये सोशल इंजीनियर था। इन्होंने समझा, प्रॉब्लम प्रोडक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। किसान प्रोड्यूस करता है लेकिन डिसाइड नहीं करता। और यहीं से कुरियन के माइंड में पहली बार एक थॉट आया, बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बिजनेस का मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। इस फेज में इनकी मुलाकात होती है त्रिभुवन दास पटेल से, एक लीडर जो फार्मर्स के लिए खड़ा था। पटेल ने कुरियन में एक स्पार्क देखा और कुरियन ने पटेल में विजन। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया, हम मिल्क का सिस्टम बदलेंगे। कुरियन ने अपने शहर का सपना साइड में रखा, इन्होंने डिसाइड किया, मैं यहीं रहूंगा, यहाँ कुछ बड़ा करूंगा। ये डिसीजन इजी नहीं था, पर ये डिसीजन हिस्ट्री चेंजिंग था। और यहीं से शुरू होती है एक्चुअल बिजनेस जर्नी। नो फंडिंग, नो ब्लूप्रिंट, सिर्फ बिलीव। बिलीव कि अगर फार्मर्स ओनर होंगे तो सिस्टम चलेगा, पर ये आइडिया इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल पार्ट था। लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, ऑपोजिशन थी, और सिस्टम ऑलरेडी पावरफुल था। और यहीं से शुरू होता है रियल स्ट्रगल, कैसे कुरियन ने टीम बनाई, कैसे लोगों को कन्विंस किया, और कैसे एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बना। ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाना सुनते हैं पहले। गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

गाना है फ्रॉम द मूवी छावा और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम रुक गए थे एक डिसीजन पर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने डिसाइड कर लिया था शहर का कंफर्ट छोड़कर गांव में कुछ बड़ा करना है, लेकिन डिसीजन लेना एक चीज होती है और डिसीजन पर टिके रहना बिल्कुल अलग होता है। यहीं से शुरू होती है रियल स्ट्रगल, क्योंकि जब आप सिस्टम बदलने की बात करते हो ना तो सिस्टम आपको आसान रास्ता नहीं देता। कुरियन का आइडिया सिंपल था, फार्मर्स खुद अपने दूध के मालिक होंगे, मिल्क कलेक्ट भी उनका, प्रोसेसिंग भी उनकी और प्रॉफिट भी उनका। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन उस टाइम के लिए ये आइडिया बहुत डेंजरस था। डेंजरस क्यों? क्योंकि इस आइडिया से मिडिलमैन का रोल खत्म हो रहा था, प्राइवेट डेरीज का कंट्रोल हिल रहा था और पावर शिफ्ट हो रही थी गांव के लोगों के हाथ में। रेजिस्टेंस आया हर लेवल से, लोकल ट्रेडर्स बोले ये नहीं चलेगा, ऑफिशियल्स बोले फार्मर्स बिजनेस नहीं चला सकते। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ लोग गुस्सा हो गए और कुछ लोग अंदर ही अंदर कुरियन के खिलाफ प्लानिंग करने लगे। कुरियन के पास ना पॉलिटिकल पावर थी, ना पैसा, ना बैकिंग, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, लॉजिक और बिलीफ। उन्होंने फार्मर्स को लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने फार्मर्स को बॉस बनाया। मीटिंग्स हुई छोटी छोटी बैठ के गांव के मंदिर के बाहर, पेड़ के नीचे, कभी डेयरी के फ्लोर पर। कुरियन समझाते थे मिल्क तुम्हारा है, डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। शुरू शुरू में फार्मर्स खुद बहुत कंफ्यूज थे, उन्होंने जिंदगी भर सर झुकाकर काम किया था, अचानक उनसे कहा जा रहा था तुम ओनर हो। ये आइडिया भी सीखना पड़ता है। कुरियन का सबसे बड़ा स्ट्रगल था ट्रस्ट बनाना, सिस्टम पे नहीं लोगों पे। इन्होंने कभी प्रॉमिस नहीं किया मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, इन्होंने सिर्फ इतना कहा जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, एक फार्मर, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव, और यहीं से टीम बनाना शुरू हो गया। कुरियन को पता था ये फाइट अकेले नहीं जीत सकता, इन्होंने इंजीनियर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स को ज्वाइन करवाया, लेकिन एक कंडीशन के साथ, ईगो बाहर छोड़कर आना, क्योंकि यहाँ बॉस कोई और नहीं, फार्मर्स हैं। ये कंसेप्ट प्रोफेशनल्स के लिए नहीं आया था, शहर के लोग गांव के लोगों के नीचे काम करें ये आसान नहीं था। बहुत लोग आए और बहुत चले गए, कुरियन उनको रोकते नहीं थे। वो कहते थे जो पावर शेयर नहीं कर सकता वो यहाँ काम नहीं कर सकता। और यहीं से बन जाती है अमूल की कोर टीम, लोग जो सैलरी के लिए नहीं पर्पस के लिए आए थे। और जैसे जैसे सिस्टम स्ट्रांग होता गया, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग होता गया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स होने लगी। उन्हें लगा इंडिया सिर्फ कंज्यूमर बना रहा है, प्रोड्यूसर नहीं। लोकल पॉलिटिक्स ने भी रुकावट डाली, फाइल्स अटकने लगी, अप्रूवल्स डिले होने लगे और कई बार तो कुरियन को ओपनली थ्रेटन भी आने लग गए। लेकिन कुरियन एक चीज पर क्लियर थे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, न क्वालिटी पे, न ओनरशिप पे, न फार्मर्स के हक पे। इनकी एक लाइन बहुत फेमस हुई थी, इफ यू वॉन्ट टू फेल ट्राई प्लीजिंग एवरीवन। इस एटीट्यूड का रिजल्ट ये हुआ जो धीरे धीरे सिस्टम झुकने लगा, मिल्क कलेक्शन बढ़ने लगा, प्रोसेसिंग इम्प्रूव होने लगी और इस ब्रांड पे भरोसा बनने लगा। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक मूवमेंट बन रहा था। गांव के लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि उनकी आवाज मैटर करती है और कुरियन एक इंजीनियर से लीडर बन चुके थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी, क्योंकि असली टेस्ट तब होता है जब नंबर्स आते हैं, स्केल आता है और दुनिया नोटिस करने लगती है कितना बड़ा बना अमूल, कितना टर्नओवर है और आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ये सब बताऊंगी आपको, लेकिन गाने के बाद गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, शो है बिजनेस।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

वैसे डॉक्टर कुरियन के लिए ये गाना तो बनता है। हम बात कर रहे हैं अमूल ब्रांड के बारे में, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और अभी हमने थोड़ी ही देर पहले बात की थी एक आइडिया का जन्म, उस आइडिया का स्ट्रगल और एक आदमी का सिस्टम के सामने खड़ा रहना। और अब बात होगी रिजल्ट्स की, नंबर्स की, इम्पैक्ट की, और उस चीज की जो शायद नंबर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेगेसी। जब अमूल का मॉडल स्टेबल होने लगा था तब दुनिया ने नोटिस किया मिल्क सिर्फ ज्यादा नहीं हो रहा था, मिल्क फेयर हो रहा था। फार्मर्स को पहली बार टाइम पर पेमेंट मिल रही थी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिल रहा था और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें इज्जत मिल रही थी। धीरे धीरे आनंद का एक्सपेरिमेंट पूरे गुजरात में फैला और फिर पूरे इंडिया में। 1960s से 70s के दौर में जब इंडिया फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मॉडल ने एक नया रास्ता दिखाया और इसी से जन्म हुआ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कोई स्कीम नहीं थी, ये एक मूवमेंट था। इस मूवमेंट ने मिल्क प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को एक साथ जोड़ा। रिजल्ट, इंडिया जो कभी मिल्क इम्पोर्ट करता था वो दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। आज अमूल सिर्फ बटर या दूध नहीं है, अमूल एक ट्रस्ट है। लैक्स ऑफ फार्मर्स, थाउजेंड ऑफ विलेजेस, मिलियन ऑफ कंज्यूमर और सब एक ही चेन का हिस्सा है। और सबसे पावरफुल बात, अमूल किसी एक इंसान की कंपनी नहीं है, ये फार्मर्स की कंपनी है। डॉक्टर कुरियन ने कभी अमूल को अपनी पर्सनल एम्पायर नहीं बनाया, इन्होंने सिस्टम बनाया जो उनके बाद भी चल सके। आज डॉक्टर कुरियन हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका विजन हर सुबह हमारी ब्रेकफास्ट टेबल पर होता है और शायद यही सबसे बड़ी सक्सेस है। उन्होंने एक बात बार बार कही थी, इंडिया इज अ पुअर कंट्री बट इंडियंस आर नॉट पुअर। प्रॉब्लम पैसों की नहीं होती, प्रॉब्लम सिस्टम्स की होती है। और आज जब हम स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, फंडिंग रोड्स की बात करते हैं ना, तो डॉक्टर कुरियन की कहानी एक जरूरी रिमाइंडर है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ वैल्यूएशन नहीं होता, बिजनेस का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं तो शायद ये कहानी आपसे एक सवाल पूछती है, आप जो बना रहे हो वो सिर्फ आपको बड़ा बना रहा है या दूसरों को भी? डॉक्टर कुरियन ने दुनिया को ये दिखाया कि अगर आप पावर को राइट हैंड्स में दे दो तो रेवोल्यूशन लाउड नहीं होता लेकिन परमानेंट होता है। इन्होंने गैराज से काम शुरू किया पर सपना सिर्फ अपने लिए नहीं देखा, इन्होंने किसान को हीरो बनाया और खुद बैकग्राउंड में खड़े रहे। और शायद यही रियल लीडरशिप होती है। इसीलिए आज के बिजनेस अनप्लग के एंड पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ शुरू कर रहे हो ना तो सिर्फ ये मत पूछिए इससे मैं क्या कमाऊंगा, कभी ये भी पूछिए इससे कौन बदलेगा। क्योंकि जब आप लोगों की जिंदगी बदलते हो तो हिस्ट्री खुद आपके नाम लिख जाती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। आज की कहानी नंबर्स की नहीं थी, ये नियत की कहानी थी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, एक नए बिजनेस, एक नए विजन और एक नए अनप्लग्ड सच के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग।

क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है गर्मियों में कि फ्रिज का पानी पिया हो पर फिर भी दिल को सुकून ना मिला हो, और फिर किसी ने एक मिट्टी के मटके से स्टील के ग्लास में पानी दिया हो, ना तो आइस ना कूलिंग बटन, फिर भी पहला घूट ही सीधा रूह तक उतर गया हो। वो कहा है कि जो सुकून मिट्टी की ठंडक में होता है वो शीशे की ठंडी बॉटल्स में कहा। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज बात होगी एक ऐसी चीज की जो सिंपल भी है, साइंटिफिक भी और इमोशनल भी, यानी मटका। बात करें मटके की तो आइए पहले ये जानते हैं आखिर कितना पुराना है ये मटका। कोई मॉडर्न इनोवेशन नहीं, इंडिया में हजारों सालों से मिट्टी के बर्तन यूज होते हुए आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन में भी मिट्टी के पॉट्स और वाटर वेसल्स मिले हैं। अब सोचिए जरा, जब ना फ्रिज था ना इलेक्ट्रिसिटी, तब ये सारी चीजें आखिर आई कहां से? तब इंसान ने मिट्टी में ही कूलिंग सिस्टम ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, नेचर के सबसे बड़े इनोवेशन अक्सर नेचर से ही आता है। और इसी के साथ वापस आकर जानेंगे आखिर मटका पानी ठंडा कैसे करता है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज बात कर रहे हैं उस जादुई मटके की, जहां पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं आखिरकार मटका पानी ठंडा कैसे करता है। अब जरा इसके पीछे का साइंस जानिए। मटका मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे पोरस। उन छोटे छोटे होल से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है और बस धीरे धीरे हवा के कांटेक्ट में इवोपरेट होता है। और बस इस इवोपरेशन प्रोसेस की वजह से अंदर का पानी नेचुरल कूल हो जाता है। मतलब मटका इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, नेचर के साइंस से चलता है। वो कहा है कि जो चीजें कुदरत के करीब होती हैं, वो अक्सर सेहत के भी करीब होती हैं। और इसीलिए गर्मियों का असली हीरो कहा जाता है मटके को। एक टाइम हुआ करता था जब हर घर के कोने में मटका होता था, उसके नीचे छोटा सा स्टैंड, ऊपर एक स्टील का ग्लास और बार बार मम्मी की आवाज, फ्रिज का नहीं मटके का पानी पियो, क्योंकि मटके का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, सॉफ्ट और अर्थी भी होता है, जैसे उसमें मिट्टी की खुशबू घुल गई है। और मटके के पीछे का ना एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, वो है कुमार और मिट्टी का रिश्ता। इस कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन वापस आकर तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
3: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
2: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के मटके के बारे में, जहां सबसे खास रिश्ता है कुमार और मिट्टी का रिश्ता। मटका सिर्फ एक वेसल नहीं, एक आर्ट है और इस आर्ट के पीछे होते हैं आर्टिस्ट, जिन्हें कहते हैं कुम्हार। वो लोग जो मिट्टी को शेप देकर रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून भर देते हैं। एक सिंपल सा मटका बनाने के लिए भी मिट्टी चुनना, उसे गूंदना, चाक पर शेप देना और धूप में सुखाना पड़ता है। कहते हैं कुछ लोग मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं, कल्चर बनाते हैं और इसलिए मटका और इंडिया कल्चर बहुत पुराना है। इंडिया में मटका सिर्फ पानी रखने के लिए नहीं था, सर्दियों में, फेस्टिवल्स में और रिलीजियस रिचुअल्स में भी मटके का स्पेशल इम्पोर्टेंस रहा है। कई जगह तो मटका प्रॉस्पेरिटी और लाइफ का सिंबल माना जाता है, क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों ही जीवन के बेस हैं। वो कहा है कि जिस मिट्टी से हम बने हैं, शायद सुकून भी उसी में छुपा होता है। अब वापस आकर जानेंगे फ्रिज वर्सेस मटके की जंग। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मटके के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं फ्रिज वर्सेस मटका। अगर बात करें फ्रिज की तो फ्रिज आज हर घर में है, पर फिर भी समर आते ही लोग मटका खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज पानी को आइस कूल करता है पर मटका उसे जीता हुआ रखता है। मटके का पानी न ज्यादा ठंडा न शॉक देने वाला, बस परफेक्ट। और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर बॉडी के लिए आइडियल नहीं होता। और यही रीजन है मटका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, समर मेमोरीज है। दोपहर की गर्मी, कूलर की आवाज, आंगन और मटके के पास रखा ग्लास। कभी कभी लगता है पुरानी गर्मियां ज्यादा खूबसूरत थी, शायद इसलिए क्योंकि तब चीजें नेचुरल थी और वक्त भी थोड़ा धीरे चलता था। वो कहा है कि पुरानी गर्मियों में एसी कम थे पर सुकून ज्यादा था। मटका हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है कि सिंपलिसिटी कभी आउटडेटेड नहीं होती और कुछ चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं ट्रेडिशन से बेटर चलती हैं। वो कहा है कि ना बैटरी चाहिए ना बटन का सहारा। मिट्टी का मटका आज भी गर्मी को हरा देता है। जो जुड़ा हो जमीन से वही असली सुकून देता है। अगली बार गर्मी लगे तो एक ग्लास मटके का पानी जरूर पीना। हो सकता है ठंडक सिर्फ गले तक नहीं, यादों तक पहुंच जाए। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर से मिलेंगे एक और सिंपल सी चीज में छुपी एक बड़ी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप बोलना, आपको
1: बताइएगा।
2: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं
0: तो फिर

वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। मगर उन डॉक्टर से दूर क्यों जाना जिन्होंने साल 2020 में कोविड के टाइम पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स बनते हुए सबका इलाज किया था। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। टुडे इज डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे आज मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगले 3 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं और लगातार जुड़ा रहूंगा। एंड फरीदाबाद, क्या हो रहा है ये हम लोगों के साथ। 1 जुलाई को वादा किया था कि मानसून आ जाएगा, ऐसा सिर्फ IMD ने वादा नहीं किया था, हमारे फ़ोन पे भी नोटिफिकेशन आ रही थी कि हाँ मानसून आ जाएगा, डोंट वरी मानसून आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद यूरोप की वीडियोज़ आ रही हैं जो सर्कुलेट हो रही है बहुत सारी, तो उनमें से कुछ कुछ सच हैं, कुछ सच बिल्कुल भी नहीं है। करेंगे उसके बारे में बात। और यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि हम तो 45 डिग्री में भी चाय पी लेते हैं, वहां तो 35 डिग्री में उनको हाहाकार मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है हाहाकार, करेंगे इसके बारे में बात। एंड एक बहुत ही बुरी खबर आई है, बुरी खबर ये है कि हेरा फेरी 3 अब रिलीज कभी नहीं होगी। इसकी बहुत सारे हिस्से की शूटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और अब लोग कह रहे हैं कि हेरा फेरी 3 नहीं आएगी। अब ऐसा कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, सब कुछ बताऊंगा। और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बातें करनी है, A to Z ABC XYZ कुछ भी बात करनी है, कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। कैसे कर सकते हैं, मेरा एक नंबर है 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग किसी भी टाइम। और इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे ढूंढ सकते हैं, रेडियो महारानी ढूंढिए, वहीं पर आरजे गौरव बहुत इजीली मिल जाएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये वाला गाना प्यारा सा, ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।

0: राजा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: क्या हम लोगों को भी डांस करना पड़ेगा?
1: नहीं, मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था, आज भी मैं इस बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसे लगता है कि अब डांस करना पड़ेगा। जैसे ही काले बादल दिखेंगे, घन घन घिरे घिरे आए बदरा, और अगर हम लोग डांस करेंगे तो क्या बारिश हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड बता दूं आपको, सुबह से मौसम विभाग ने बोला था बारिश हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड अभी देखो, बारिश हो सकती है कि आपके एरिया में हो रही हो, क्योंकि मौसम विभाग का कहना था 50% चांसेस है आज बारिश होने के। और 50% का मतलब ये नहीं होता कि 50% चांसेस है, इसका मतलब ये होता है कि 50% एरियाज में बौछार हो सकती है। हो सकता है आप लोग नहर पार किसी सेक्टर में रहते हो, वहाँ पर बारिश हो रही हो, और जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस वक्त वहाँ पर बारिश नहीं हो रही हो। और हो सकता है कि आप लोग कहीं पर भी बैठे हो, वहाँ भी बारिश ना हो रही हो और यहाँ भी बारिश ना हो रही हो। तो देखो, मानसून कब आएगा ये बोला गया था 1 या 2 तारीख को, और वैसे भी इस साल की शुरुआत में ही बोल दिया गया था सुपर एल नीनो आ रहा है और मानसून को अफेक्ट

करेगा। और अब लग रहा है कि हाँ मॉनसून इफेक्ट हो चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर भी बारिश जल्दी आ गई थी, उससे पिछले साल भी बारिश जल्दी आ गई थी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बारिश का इतना इंतजार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे की गर्मी याद है आप लोगों को, सैटरडे छोड़िए संडे की गर्मी याद है आप लोगों को, संडे भी छोड़ दीजिए कल वाली गर्मी याद है आप लोगों को, इतनी ज़्यादा गर्मी। और एक बार को वो लू वाली गर्मी भी झेली जाती है, बट ये उमस वाली गर्मी झेली नहीं जाती। एक्चुअली होता क्या है, पसीना आता है, पसीना जल्दी सूखता नहीं है, फिर उसके बाद गर्मी, बॉडी की जो हीट होती है ना वो ट्रैप्ड रह जाती है, वो निकल नहीं पाती, तो फिर यही होता है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे अब कि इस गर्मी से बचें जल्दी से जल्दी, और प्रे करेंगे जल्दी से बारिश हो जाए। और इसी के साथ साथ यूरोप में क्या हो रहा है अभी पता आप लोगों को, यूरोप की कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रही है, मगर सब की सब वीडियो सच नहीं है। कौन सी है सच्ची, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना, आदित्य भारद्वाज की आवाज़ में। बाय।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

कुछ वीडियोस आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि यूरोप की ट्रैफिक लाइट पिघल रही है, कुछ वीडियोस आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि कुछ और ट्रैफिक लाइट्स पिघल रही हैं, ट्रैम के जो रबड़ वाली साइड से कंक्रीट है वो पिघल रही है, वो फट जा रही हैं, एंड ना जाने बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। तो सब लोग कह रहे हैं यूरोप में ये हो गया, यूरोप में वो हो गया, मगर सारी वीडियोस ट्रू नहीं है। देखो एक चीज़ है सिंपल सी, वो ये कि लोहा जो होता है ना, जो इस पे ट्रैम नेटवर्क चलता है भाई, लोहा 1000 डिग्री पे जाके पिघलता है और अभी वहां पर सिर्फ 35 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा यूरोप में। तो देखो नकली वीडियोस आ रही है, नकली एज इन पुरानी वीडियोस, जो ये स्ट्रीट लाइट की वीडियोस और जो रेड लाइट की वीडियोस हैं वो एक्चुअली में साल 2021 और साल 2025 की वीडियोस है, जहां पर एक में कैफे में आग लगी थी तो उसके पास जो रेड लाइट थी वो पिघल गई थी, और दूसरी जगह पर हुआ ये था कि गाड़ी में आग लग गई थी, उसके पास जो रेड लाइट थी वो पिघल गई थी। तो ऐसे वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं ये बोल के कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, अगर ऐसी गर्मी इंडिया में पड़ जाए तो क्या हाल होगा। कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी, इंडिया में मॉनसून आने वाला है, इसी का प्रे करेंगे। और हाँ, जो ये वीडियोस रिलीज हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, उन सभी लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो फेक न्यूज़ फैलाने से अच्छा है आप एक बार गहन रिसर्च कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैंने भी तो रिसर्च करी है ना, मुझे भी तो कहीं ना कहीं से पता लग गया है ना, तो मैंने भी रिसर्च करके पब्लिक को बताया है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यूरोप की, तो एक इंडिया से लड़का गया यूरोप घूमने के लिए और उसका ये कहना है कि जैसे ही वो यूरोप पहुंचा तो उसने देखा कि सच में यूरोप की जो हीट वेव है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा बदतर है, क्योंकि इंडिया में जब वो कह रहा है कि मैं जब इंडिया से निकल रहा था तो उस टाइम 42-45 डिग्री टेम्परेचर इंडिया में था और हर जगह एसी की सुविधा थी, मगर जैसे ही मैं रोम पहुंचा हूं तो रोम में 36 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी गर्मी ज़्यादा लग रही है, और परिवार भी उनका काफ़ी परेशान हुआ और उसने पूरी वीडियो डाली नो डाउट। बट ये गर्मी उधर पड़ क्यों रही है, उसका रीज़न है ओमेगा ब्लॉक। अब ये ओमेगा ब्लॉक होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुनते रहिए मुझे, यानी कि द मोस्ट वांटेड मुंडा को। मैं आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ जिसका नाम है ब्राउन मुंडे। सुनिए इस गाने को, बातें और गाने भी चलते रहेंगे, और यूरोप में ओमेगा ब्लॉक क्या चीज़ है, क्या ये इंडिया में भी होता है, सब कुछ बताऊँगा मगर इस गाने के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

क्या आपको पता है कि यूरोप में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ ओमेगा ब्लॉक. ओमेगा क्या होता है काफी सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ. स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर. मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ. ये समझ लो आप लोग, आपका जो बल्ब है ना, उसी की तरह होता है ओमेगा. मतलब उसके ना राइट ना लेफ्ट ना आगे ना पीछे, कहीं और पर कुछ नहीं होगा. ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा के अंदर ब्लॉक हो जाएगी हीट और वो हीट डोम अफेक्ट बन जाएगा. बहुत ही ज़्यादा गर्मी, भारी गर्मी हो जाएगी. सेंटर में इतना हाई प्रेशर सिस्टम हो जाता है कि गर्म हवा को एक जगह लॉक कर देता है, और इसी वजह से एक तो बादल नहीं बनते, फिर उसके बाद धूप निकलती है और गर्मी और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है, जैसे कि हीट वेव. और इसमें क्या होता है, वेदर ब्लॉक हो जाता है. जो ठंडी हवा है वो नॉर्मल दिनों में यूरोप में, आपको पता है नॉर्मल दिनों में ठंडा ही रहता है यूरोप में, बट जब ये ब्लॉक बन गया ना ओमेगा ब्लॉक, तो इसकी वजह से ठंडी हवा आगे नहीं बढ़ पा रही और वो गर्म होती जा रही है और इस तरह का मौसम क्या होता है कई दिनों तक या फिर कई हफ्तों तक चल सकता है. तो ये जो गर्मी यूरोप में पड़ रही है, हो सकता है कि ये कुछ दिन और चले. और ऐसी ही गर्मी साल 2024 में इंडिया में भी पड़ी थी, आप सबको याद होगा, जब 8 से 9 दिन वो गर्मी पड़ी थी भयंकर वाली, जिसमें लोगों की हालत खराब हो गई थी. खैर, इंडिया का जो एक टेम्परेचर टॉलरेंस है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से इंडिया में कोई कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट नहीं हुई थी, बट स्टिल अभी यूरोप में बहुत सारी कैजुअल्टीज़ भी रिपोर्ट हो रही है. और इसके बाद क्या होता है, मतलब अब ओमेगा ब्लॉक तो बन चुका है, अब उसके बाद क्या होगा, मतलब उसके आसपास वाला जो एरिया है ना, जो पूरा बल्ब है मान लेते हीट डोम बना पड़ा है, डोम के बाहर वाले एरिया में आंधी तूफान बारिश तीनों चीज़ें चल रही होगी. जैसे कि जर्मनी और फ्रांस में, वहाँ पर भी इस टाइम दिन में तो गर्मी है, मगर उसके आसपास वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर इस टाइम आंधी और तूफान और जोरों की बारिश हो रही होगी. और बस मैं ये प्रे करूँगा कि जो लोग भी गर्मी से जूझ रहे हैं उनके वहाँ भी बारिश हो जाए, और फरीदाबाद में भी प्लीज़ बारिश हो जाए. इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता. और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाने चला सकता हूँ. गाने का नाम है वो, एक डीनो जेम्स और बादशाह की आवाज़ में. सुनिए गाने को रेडियो महारानी पर.

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरी मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जस्ट इमेजिन कि आप लोगों की एक बहुत ही वेल सेटल्ड जॉब है, आपका 45 LPA का पैकेज है, तो क्या आप उसके बाद UPSC की तैयारी करोगे? आप लोग भी बोलोगे चलो यार ठीक है, अब पैसा आ रहा है, अब ज़रूरत नहीं है कोई UPSC की तैयारी करने की। मगर हर इंसान ऐसा नहीं होता। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सोशल मीडिया पर एक लड़की की वीडियो वायरल हो रही है और वो लड़की को पैकेज मिला था 45 लाख LPA, इतना बड़ा पैकेज हर किसी को नहीं मिलता है, और उसके बावजूद इस लड़की ने नौकरी छोड़ दी। एक्चुअली मैं माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लगी थी, सुकून नहीं मिल रहा था इस लड़की को, इसलिए इसने वो चीज़ फॉलो करी जिससे इसे सुकून मिले। अब हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी तो छोड़ दी, मगर फिर उसके बाद UPSC की तैयारी शुरू कर दी। देखो मैं ये बोलूँगा, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब कि दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है, दूसरे के घर में घास अच्छी ही दिखती है, अपने ही घर में सब कुछ खराब लगता है। तो इस लड़की को भी लग रहा होगा कि अभी जो मेरी जॉब है वो ख़राब है, मगर UPSC करने के बाद मैं शायद अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं एक बार उनसे पूछिए, और जो लोग क्लियर कर लेते हैं, नो डाउट रुतबा बहुत अच्छा है, बट उनके सर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप एक बार जाके बात करके देखिए। तो यहाँ पर लोग बड़ा अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हो सकता है UPSC उनका जुनून हो। नो डाउट UPSC जुनून हो सकता है, और हर किसी के लिए पैसा मायने नहीं रखता, ये बात भी रियलिटी है। तो इसकी जगह पर आप होते तो आप लोग क्या करते ये ज़रूर बताइएगा। नंबर है जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए मिक्स मैशअप गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

साल 2000 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हेरा फेरी, और फिर उसके 6 साल बाद एक और फिल्म आई जिसका नाम था फिर हेरा फेरी, और सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हेरा फेरी का पार्ट 3 भी आएगा, मगर ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ था। और अब 20 साल हो चुके हैं पूरे के पूरे, और अब उम्मीद जागी थी लोगों के अंदर कि हाँ हेरा फेरी पार्ट 3 भी बनेगी, मगर क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हेरा फेरी अब आएगी ही नहीं, कभी रिलीज ही नहीं होगी, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? हाँ मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हो सकते हो आप लोग, मैं भी बहुत उदास हुआ इस खबर को सुनकर, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुद बोला है, और उन्होंने बोला है कि कभी भी फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी, और वो अब हेरा फेरी 3 से अपने आप को अलग कर चुके हैं। एक्चुअली वो खुद कह रहे हैं कि देखो मेरी जानकारी के मुताबिक काफ़ी सारे कानूनी दाव पेचे और भी काफ़ी सारे निजी झगड़े भी हो रखे हैं, उसकी वजह से हेरा फेरी 3 कभी रिलीज़ नहीं हो पाएगी, मगर अभी दिल छोटा नहीं करना है। देखो एक्चुअली क्या है, ये फिल्म का जो थर्ड पार्ट है ना, सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हर जगह मीम्स में इनके मीम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये पकड़ रहे मेरे को पकड़ बाबूराव गणपतराव आपटे। खैर अभी मैं जो बात करना चाहता हूँ, दिल छोटा इसलिए नहीं करना क्योंकि जो प्रोड्यूसर है जिनका नाम है फिरोज नाडियाडवाला, उनका कहना है कि देखो सब कुछ सही रास्ते पर है और सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इस फिल्म में ना है अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार बिलीव करते हैं कि काम फटाफट हो जाए, धैड़ पैड़ हो जाए, तो ये फटाफट जब काम हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग देख पाएंगे क्या हेरा फेरी 3 पार्ट 3 कब रिलीज होगी। साल 2026 में तो कोई आसान नहीं देख रहे, साल 2027 में रिलीज होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। चलिए उससे पहले आप सभी के लिए केड़े पासे जाइए सजना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, अकेला नहीं ये गाना मिक्स मैशअप है, सुनिए इस गाने को, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

मैंने भी देख लिया आ जाके, तू आके देख ले, मैंने भी आ जाके देख लिया कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। और आज सुबह सुबह मैंने उन बच्चों को देखा जो सुबह सुबह जा रहे थे और फिर चिल्ला रहे थे, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे बच्चे, और हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कुछ बच्चे ऐसे हों। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है कम्प्लीटली, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे किसका मन करता छुट्टियों के बाद वापस स्कूल जाने का, तो आज बच्चों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है, स्कूल जा चुके हैं बच्चे। जिन बच्चों के स्कूल पहले से खुल चुके थे वो तो पहले से उदास थे, मगर कुछ बच्चों के जो बच्चे थे उनके आज खुल गए हैं, और जो बच्चे अभी भी एंजॉय कर रहे हैं उनके मंडे को स्कूल खुल जाएंगे। बट आज सुबह सुबह जब मैंने बच्चों को देखा ना, तो कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान थी, मगर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम वर लाइक सैड कि अब सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ रहा है। आई नो सारे पेरेंट्स खुश होंगे कि चलो अब घर में हंगामा नहीं होगा, भाई 2 बजे तक तो हंगामा नहीं होगा, उसके बाद तो बच्चे वापस आ ही जाते हैं। खैर जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उन सभी से मैं ये सवाल करना चाहूँगा, कैसा होता, मतलब कैसा फील होता आप लोगों को जब बच्चे बहुत गर्मियों की छुट्टियों के बाद बहुत दिनों बाद अपने स्कूल वापस जाते हैं, क्योंकि एक आदत सी बन जाती है, बच्चे घर के अंदर हैं, एक रौनक सी माहौल सा बना रहता है घर के अंदर। तो आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, नंबर जी मेरा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर गाने और बातें चलती रहेंगी, और उन्हीं में से बता दूं आपको आज डॉक्टर्स डे है, तो एक डॉक्टर मेरे साथ जुड़ने वाले हैं बस कुछ ही देर में। उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना के की आवाज़ में रेडियो महारानी 9.6 पर।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: तो जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मेरे साथ आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर होम्योपैथी डॉक्टर जुड़ेंगे, तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिषेक कसाना, सीनियर क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर। सर स्वागत है आपका स्टूडियो में।
1: थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीइंग माय प्लेजर दैट आप लोगों ने मुझे यहां पे इनवाइट किया है होम्योपैथी वर्ल्ड डे पर।
0: बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि फरीदाबाद की पब्लिक को ये पता चले कि होम्योपैथी के अंदर क्या जादू है, और साथ ही साथ सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हाउ इट स्टार्टेड, लाइक होम्योपैथी स्टार्ट कैसे हुई और इंडिया में कैसे आई।
1: सो गौरव, इसका जो ऑरिजिन है वो आपका यूरोप से है।
0: ओके,
1: डॉक्टर हेनिमैन जो है ही वाज अ फिजिशियन, ही वाज अ एलोपैथिक फिजिशियन इन जर्मनी, एंड उन्होंने देखा कि वहां पर जर्मनी के अंदर एलोपैथी मेडिसिन के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेप यूज करते थे जो बड़े क्रूड हुआ करते थे, पेशेंट्स को बड़ा पेनफुल हुआ करते थे
0: जी।
1: तो उन्हें उसको देख के उनका उससे उससे मत हट गया, उन्होंने कहा यार ये जो है पैथी ये बड़ी लोगों को नुकसान दे रही है, लोगों को आपका इसके साइड इफेक्ट्स हैं
0: जी,
1: और ये बड़ा मतलब हार्श ट्रीटमेंट है। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया कि आपका इस पैथी को छोड़ दिया, और उन्होंने आपका ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया बुक्स का।
0: okay.
1: उनको कई सारे लैंग्वेज की आपका नॉलेज थी, तो उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया। व्हेन ही वाज ट्रांसलेटिंग अ बुक रिटन बाय कलिंस, कलिंस मैथमेटिका, इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि कैसे आपका सिंकोना बाग से आपका मलेरिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं।
0: okay.
1: इससे क्ल्यू को पकड़ के उन्होंने आपका होम्योपैथी का आपका जो पहला प्रिंसिपल है लाइक क्योर लाइक, जिसको okay. बोलते हैं सिमिलर सिमिलस कुरेंचर, वहां से डेवलप किया, उसको होम्योपैथी को डेवलप किया।
0: okay.
1: और इंडिया में इसको लाने वाले जो थे वो थे आपका डॉक्टर जॉन मार्टिन।
0: ओके,
1: डॉक्टर जॉन मार्टिन उस टाइम लाहौर में थे, और उन्होंने आपका हमारे इंडिया के अंदर पंजाब स्टेट के अंदर हमारे एक महाराजा थे, महाराजा रंजीत सिंह जी, उनको अपने घोड़े से बड़ा प्यार था
0: जी।
1: उनके घोड़े को कुछ पैर में अल्सर्स हो गए थे जो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गए थे।
0: okay.
1: इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था, उस टाइम डॉक्टर्स ने बताया, एलोपैथी डॉक्टर्स ने कि भाई इसको पैर को काटना पड़ेगा, एम्पोटेशन करना पड़ेगा इसका, और वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। तो किसी ने उनको बताया कि भाई दूर कहीं से आपका लाहौर के अंदर कोई आपका जॉन मार्टिन नाम के कोई डॉक्टर है, वो आपका होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे हम लोग को कभी डर हो जाता है भाई हमारे घर में किसी को कैंसर हो गया, ऐसा कोई अनक्योरेबल डिजीज हो गया, तो हम बाकी चीजों को ट्राई करते हैं, तो ऐसे ही महाराजा जी ने आपका उनको बुलाया स्पेशली अपने पास, जॉन मार्टिन जी को
0: जी।
1: जब जॉन मार्टिन जी ने उनके घोड़े को ट्रीट किया और पूरा ठीक कर दिया, जिसके लिए डॉक्टर्स उनको बता रहे थे उनको एम्पोटेशन कराना पड़ेगा, पैर कटवाना पड़ेगा, तो उससे बड़े मतलब वो प्रभावित हुए
0: जी।
1: उन्होंने उस पैथी को अपने पूरे मतलब प्रजा के लिए ओपन कर दिया कि सब लोग होम्योपैथी दवाई खाइए, सबने खानी शुरू हुई, और वहां से इंडिया के अंदर इसका जन्म हुआ।
0: ओके okay, तो मतलब इंडिया में ऐसे आई हमारी होम्योपैथी की दवाई। बट यहाँ पर एक और सवाल आता सर कि क्या एआई के जमाने में होम्योपैथी रिप्लेस हो सकती है या नहीं।
1: गौरव बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जितने भी जेंजीज हैं वो इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो हर चीज को ना एआई से कन्वर्ट करके चेंज कर देते हैं, वो चाहते हैं फास्ट रिजल्ट चाहिए हम लोग को, तो एआई में सर्च करेंगे सारा का सारा स्क्रिप्ट मिल जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि होम्योपैथी को आप उसको एआई से आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं
0: जी।
1: द रीजन इज होम्योपैथी में उनका एक और प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो दवाई का मेडिसिन का सिलेक्शन करना है दैट शुड बी इन द बेसिस ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम।
0: ओके,
1: सो गौरव होम्योपैथी जो है ये एक टेलर्ड मेडिसिन है।
0: ओके,
1: टेलर्ड मेडिसिन मींस इंडिविजुअलाइज है, इसमें आपका जो टोटलिटी है पूरा उसके ऊपर बेसिस पे डिपेंड करता है कि क्या दवाई आपकी बनती है
0: जी।
1: वी कैन नेवर गिव अ सिंगल सिमिलर मेडिसिन टू ऑल द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ सिंगल डिजीज। से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 5 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कफ सोर थ्रोट, तो एज पर देयर उनकी कंडीशन, एज पर देयर सिम्टम्स वी हैव टू चेंज द मेडिसिन।
0: ओके,
1: तो इट्स नेवर द सिमिलर।
0: Okay.
1: तो बिकॉज वो डॉक्टर का इंपॉर्टेंस में क्या है कि आपको टेलर्ड करना पड़ेगा, आपको टोटेलिटी लेना पड़ेगा, उस टोटेलिटी के हिसाब से मेडिसिन देना पड़ेगा।
0: AI हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। और होम्योपैथी से रिगार्डिंग बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, तो उन सवालों के ऊपर और भी जवाब मांगेंगे हम डॉक्टर से, मगर थोड़ी देर बाद, अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आते हैं और होम्योपैथी के ऊपर और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर अभिषेक कसाना के साथ। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर

फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना तो मन भी है, मिले जे कोई चाहता है।

0: स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, मैं उनको अच्छा मानता हूँ.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द क्रोनिक कंडीशंस, क्रोनिक कंडीशंस सबसे हैरानगी वाली बात मैं आपको जो शेयर करूंगा मेरे 22 साल के प्रैक्टिस के अंदर, गौरव आपको भी हैरान करेगी वो चीज.
1: जी.
0: जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कभी भी वो फर्स्ट पेशेंट नहीं होते, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में होम्योपैथी को नहीं अपनाते हैं. व्हेन दे गेट फेल्ड बिकॉज ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट देन दे विजिट इट. तो हमारे पास विजिट उनका पहले से नहीं होता है. वो विजिट करते हैं वहां से फेल होने के बाद. तो अगर वो इतना अच्छा सिस्टम है और उसको ठीक कर सकता है तो लोग हमारे पास विजिट ही नहीं करेंगे. मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग हमारे पास कम विजिट करें, वो पहले ही ठीक हो जाएं. हम लोग का मोटिव एज अ डॉक्टर ये नहीं है कि मैं अच्छा हूँ या वो अच्छे हैं. मोटिव ये है कि हम ह्यूमैनिटी को कैसे क्योर कर पा रहे हैं. तो अगर मेरे काउंटर पार्ट, मेरे जो ब्रदर हैं आपका एलोपैथी के अंदर, अगर वो उसको ठीक कर पाते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट.
1: जी.
0: तो वी हैव आवर ओन बेनिफिट्स, दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स.
1: सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी?
0: इन अ सिंपल वे आपको बताता हूँ कि जैसे ड्रग प्रूविंग की बात करते हैं.
1: ओके.
0: जैसे ड्रग प्रूविंग के अंदर उनका क्या होता है कि आपका हम सारी ड्रग प्रूविंग करते हैं, आपका किसी एनिमल पे कर रहे हैं, कभी बंदर पे कर रहे हैं, कभी आपका किसी बिल्ली के ऊपर करके देख रहे हैं. द बेस्ट पार्ट ऑफ होम्योपैथी इज हम लोग ड्रग प्रूविंग कभी भी किसी एनिमल पे नहीं करते हैं.
1: ओके.
0: हम करते हैं इसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर, बिकॉज दवाई तो ह्यूमन बींग खाने वाले हैं उसके लास्ट में. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हम किसी डिजीज कंडीशन में भी नहीं करते हैं उसको, हम उसको करते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग के ऊपर.
1: ओके.
0: कि उस पर किस टाइप के उसके असर आ रहे हैं, उसी से आपकी मेडिसिन का टोटेलिटी का पता लगता है कि मेडिसिन का पिक्चर क्या है.
1: ओके.
0: तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. सेकंड पार्ट ये है कि इन दवाइयों का, क्योंकि इसको इतना डाइल्यूट किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता.
1: मैं भी इसी सवाल पर आने वाला था. साइड इफेक्ट?
0: प्लीज.
1: बिल्कुल सर. साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है. क्या ये मिथ है, क्या ये सच है?
0: गौरव, कुछ हद तक ये मिथ है और कुछ हद तक ये सही है.
1: ओके.
0: मैं समझाता हूँ आपको. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पानी से डर लगता है, आपका आंसर होगा नहीं मुझे डर नहीं लगता.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन अगर मैं आपको किसी डैम के पास ले जाऊंगा तो आपको उस पानी की आवाज से भी डर लग जाएगा.
1: बिल्कुल.
0: तो कोई भी चीज आपके लिए पॉइजन है या आपके लिए हेल्दी है वो केवल उस चीज से नहीं पता लगता, उस चीज की डोज से भी पता लगता है. तो डोज मैटर अ लॉट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज उसको यूज कौन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम बात करते हैं कि आपके मदर आपके लिए किचन में कुछ नाइफ से कुछ काट के सैलेड बना रहे हैं.
1: ओके.
0: क्या नाइफ यूज करना सेफ है? आप बताइए क्या क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर.
1: कुछ हद तक सेफ है.
0: कुछ हद तक नहीं. अगर आपकी माँ के हाथ में नाइफ है तो आप देखेंगे 20 साल के अंदर आपकी माँ का कभी हाथ नहीं कटा होगा उस नाइफ से. दैट मींस उनके हाथ में वो सेफ है.
1: बिल्कुल.
0: अगर यही नाइफ मैं आपके 9 महीने के बच्चों को दे दूं तो क्या वो सेफ है?
1: नहीं, फिर बिल्कुल भी सेफ नहीं है.
0: सेम वे अगर हम लोग होम्योपैथी का मेडिसिन किसी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से लेते हैं तब वो सेफ है.
1: बिल्कुल.
0: अगर हम खुद ही उसको सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली वो सेफ नहीं है. उसके कई सारे प्रो एंड कॉन्स होंगे.
1: ओके. तो इसके ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन सही है या नहीं. मगर उससे पहले एक गाना आप सभी के लिए. रेडियो महारानी सुनते रहिए. आप सभी के साथ खूब सारी बातें और भी होती रहेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिषेक कसाना, हु इज अ सीनियर क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर. और वापस आकर और भी ढेरों बातें होंगी. फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना.

0: शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले, रहेगा तो गुलाम ही।

0: होम्योपैथी का जब जब नाम आता है तब तब हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या मेरी बीमारी ठीक हो भी पाएगी या नहीं। और इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर अभिषेक कसाना, हो सीनियर क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर। सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, और वो ये है कि क्या आजकल की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बीमारियां हैं, बीपी हो, अस्थमा हो, अस्थमा तो खैर नहीं होंगे, उसको साइड में रख देते हैं, बट अगर मैं सारी बीमारियां इंक्लूड करूं, डायबिटीज, थायराइड, तो क्या ये सब क्योर हो सकती हैं होम्योपैथी से?
1: गौरव, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आपका किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई बीपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। अगर पेशेंट ये सोचता है केवल दवाई खा के ठीक हो जाएगा तो कहीं ठीक नहीं हो पाएगा। उसको अपने डॉक्टर की सारी बातें सुननी पड़ेंगी, उसके हिसाब से अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर उसको क्योर मिल सकता है। विदाउट दोज थिंग्स क्योर कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो अलॉन्ग विद द मेडिसिंस ही हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डॉक्टर वेरी केयरफुली। उस इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको फिजिकल एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। अगर डायबिटिक कंडीशन है तो उसको आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना भी खाना पड़ेगा, जिससे कि अपनी बॉडी के अंदर वो सुधार कर पाए। कोई भी क्योर करने के लिए हम लोग को आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनली खुश रहना बहुत जरूरी है, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, और खाना खाने के अंदर अपना वो खाना खाना जिसमें आपका प्रोटीन का इंटेक ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, मीठा कम हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए।
0: बिल्कुल। और सर, जैसे कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, सबको पता है यहाँ पोल्यूशन कितना ज्यादा है, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां आजकल हो रही है, तो क्या इसका भी कुछ क्योर है होम्योपैथी में?
1: गौरव, रेस्पिरेटरी एलर्जीज के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस हो या एस्थमेटिक कंडीशन हो, ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशंस हो, इन कंडीशंस में बहुत अच्छा एक्शन आता है होम्योपैथी का। बहुत छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं और वो आके बताते हैं कि सर, हम लोग आपका निबुलाइज नहीं कराना चाहते ज्यादा अपने बच्चे को, हम उसको पंप दे रहे हैं तो डॉक्टर ने बोला इनको अस्थमा हो गया, इसको लॉन्ग टर्म तक अस्थमा के लिए मेडिसिन देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों पे एक्शन होम्योपैथी का बहुत अच्छा आता है। और पेशेंट देखता है कि ईयर बाय ईयर, देखिए उसमें आप सडनली सारी मेडिसिन बंद नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इमरजेंसी में आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अलोंग विद द मेडिसिंस आपको कभी कभी पफ यूज करना पड़े, लेकिन पेशेंट खुद आके बताते हैं आफ्टर ईयर टाइम कि सर, हम लोग का जो इनटेक ऑफ पफ था वो पहले से बहुत कम हो चुका है, हमारा इनटेक ऑफ एलोपैथी मेडिसिंस बहुत रिड्यूस हो चुका है। एंड स्लोली स्लोली इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डाइट जो डॉक्टर बताते हैं, जो आप फिजिकल एक्सरसाइज उनको बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं लोगों को, अलोम विलोम बताते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, उन एक्सरसाइजेस से आप लोग का जो चेस्ट का कैपेसिटी बढ़ता है
0: जी,
1: तो उसमें डिफरेंसेस 100% आते हैं।
0: ओके सर, यहाँ पर काफी बार हम लोग आजकल सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, और सोशल मीडिया पर हम लोग कोई वीडियो देखते हैं कि इसको ले लो ठीक हो जाओगे, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, बट आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल है, लोग गूगल पर टाइप कर देते हैं कि इस बीमारी के लिए हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है?
1: गौरव, होम्योपैथी के अंदर ना आराम मिलना इज अ डिफरेंट थिंग एंड ठीक होना इज अ डिफरेंट थिंग। देखो, अगर आप ये मान के चलो कि यू हैव अ डिजीज, उस डिजीज के लिए आपने एक कॉम्प्लेक्स कुछ सॉल्यूशन कहीं किसी फार्मेसी से ले लिया, इसमें 4-5 दवाइयां मिली हुई हैं
0: जी,
1: आप जब उस दवाई को देंगे तो उसमें से एक दवाई ऐसी है जो आपकी डिजीज को हेल्प करती है, तो आपको उस डिजीज में आराम मिलेगा उस सिंगल दवाई से, लेकिन बाकी जो 4 दवाई है वो आपको नुकसान देंगी।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, 4-5 मिक्सोथेरेपीज नहीं करनी चाहिए, इसके अगेंस्ट है हमारा लॉ है इसके ऊपर। लॉ ऑफ सिमिलर यही कहता है कि हमें सिमिलर मेडिसिन देनी है, एंड लॉ ऑफ मिनिमम डोजेस ये कहता है हमें मिनिमम डोजेस देनी है। हमें कई सारी मेडिसिन मिक्स करके नहीं देनी है आपको, इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने इस पे एक लॉ बनाया था, लॉ ऑफ टोटेलिटी। मींस आपका जो मेडिसिन का सिलेक्शन का होगा वो दैट बेसिस शुड बी टोटेलिटी ऑफ द सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स की टोटेलिटी लिया जाए उसके बाद उस दवाई को दिया जाए। जो दवाई ए आपके लिए बहुत अच्छी है, हो सकता है दवाई ए आपके फ्रेंड के लिए अच्छी ना हो।
0: बिल्कुल।
1: सिमिलरली उनकी डिजीज चाहे आपका सेम हो, लेकिन आपकी दवाइयों का सिलेक्शन अलग अलग हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस, इसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। क्या है तो साइड इफेक्ट उन्हीं चीजों का होता है जहाँ पे उसको हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं। इट शुड नॉट बी डन।
0: ओके, इट शुड नॉट बी डन। सबका बॉडी टाइप डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों को दवाई हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई ही लेनी है, अपने आप से खुद को डॉक्टर नहीं समझना है। तो इसी के साथ और भी बातें होंगी होम्योपैथी के ऊपर, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है ना, तो इस बदलते हुए मौसम में सबसे ज्यादा एलर्जीज हो रही है और इसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही है, बट द केसेस आर मोर इन छोटे बच्चे। तो मेरे साथ इसके लिए ऊपर बात करने के लिए है वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर डॉक्टर अभिषेक कसाना, हू इज द सीनियर क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर। सर, आजकल ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
1: गौरव, इस कंडीशन में, इस सीजन के अंदर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ना एलर्जिक राइनाइटिस से सफर कर रहे हैं, उनको छींकें आ रही हैं बहुत ज्यादा, नाक से पानी आ रहा है, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं उनको खांसी नहीं ठीक हो रही, दे हैव टेकन अ एंटीबायोटिक कोर्स ऑल्सो, उसके बाद भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, दे आर टेकिंग पफ्स, बट स्टिल उनका अस्थमेटिक अटैक बार बार रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली बढ़ता जा रहा है। एंड दिस आई हैव नोटिस इन लास्ट 5-6 ईयर्स, जैसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ा है हम लोग का दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं एलर्जी कंडीशंस। इन कंडीशंस के अंदर अगर हम बोले होम्योपैथी क्या रोल प्ले करता है, तो हाँ, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा होम्योपैथी मेडिसिन जो होता है आपकी सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। जब भी आपकी सेल ब्रेकअप होता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, डस्ट, केमिकल, इवन पोलन्स ऑल्सो, तो वो केमिकल रिलीज करता है हिस्टामिन, जो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। स्किन द सिम्टम्स आते हैं रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग एंड ड्राइनेस। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी पे स्किन पर आते हैं तो कॉल इट डर्मेटाइटिस। आप फिर इस पे फोकस करेगा इसके सुफिक्स के ऊपर, आइटिस। अगर यही सिम्टम्स आपके ब्रोंकियल्स में आता है कॉल इट ब्रोंकाइटिस, अगेंस्ट आइटिस। अगर ये सिमिलर सिम्टम्स आपके टॉन्सिल्स में आता है कॉल इट टॉन्सिलाइटिस। तो एक तरीके का एलर्जिक इन्फेक्शन है, एलर्जिक इन्फ्लामेशन है ये सारा। तो इन कंडीशंस के अंदर जो मेडिसिन देते हैं वो आपका एंटी हिस्टेमिक कितना काम नहीं करता। जो आप एंटी हिस्टेमिक शॉट देते हैं बच्चों को, उसको उसका एक्शन रहता है 12 घंटे से 24 घंटे के लिए, उसके बच्चों को फिर से रिकरेंट उसको छींकें आने लग जाती हैं। होम्योपैथी बिकॉज आपकी बॉडी को स्टिमुलस देता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी के लिए इसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपकी बॉडी, बच्चे की बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है उसके अंदर, एंड यू फाइंड कि उसको दवाई देने की वजह से बच्चे का जो आपका सेल वॉल है वो स्ट्रॉन्ग होता है। And when the cell wall becomes strong, you'll find the intensity, the frequency, and the duration of the suffering of the child gets down.
0: जी.
1: So in this way we help them.
0: Okay, sir, इसमें आपने अभी बोला immunity strong होती है, but आजकल आपने देखा है autoimmune diseases भी बढ़ रही है सब लोगों में. तो उसका भी क्या कोई cure है homeopathy में?
1: Autoimmune disorders वो disorders होते हैं जिसमें आपकी body की जो cell है वो खुद confused हो जाती है और अपनी खुद की cells को ही वो मारने लग जाती हैं या उसको destruct करने लग जाती हैं। ऐसे कई सारे डिजीज जैसे स्किन के अंदर हम देखते हैं, सोरायसिस कंडीशन है, लाइकन पेनस कंडीशन है, ऐसे ली टाइप की कंडीशंस हैं
0: जी।
1: इन कंडीशंस का कहीं पर कोई क्योर नहीं होता
0: जी।
1: इसमें लॉन्ग टर्म तक हम लोग स्टेरॉइड देते रहते हैं पेशेंट्स को, तो उससे आपको उनको, जिसमें एलोपैथी डॉक्टर्स पे यूजली स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, तो उससे आपको उनको नुकसान होता है
0: जी।
1: इन चीजों को मैनेज करने के अंदर होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसे कई सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक में विजिट करते हैं जो कहते हैं, सर हम 10-10 साल से दवाइयां खा रहे हैं, हम लोग को दिक्कतें हो रही हैं, वी वॉन्ट टू शिफ्ट from this path to something else। तो होम्योपैथी का इसमें सपोर्टिव रोल में बोलना चाहूंगा।
0: Okay.
1: ये सपोर्टिव रोल है और ऐसा रोल है कि इसमें आपका, ऐसे स्किन वाले केस की अगर बात करें तो वी हैव सीन नंबर ऑफ पेशेंट्स जहां पे आपका उनकी स्किन के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया आफ्टर रिड्यूसिंग दोस क्रीम्स, जो लोशंस लगा रहे थे उनका क्रीम का इंटेक कम कर चुके हैं वो लोग, एंड दे आर फीलिंग मच बेटर। एंड एट द एंड कई ऐसे पेशेंट जिनको बोलेंगे उन्होंने स्टॉप कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं सारा दवाई का इंटेक, एंड दे आर हैविंग अ हेल्दी लाइफ।
0: तो सर, सिंपल सा ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना खान पान सही रखो और अपना दिनचर्या बिल्कुल सही रखो, और इसी के साथ साथ होम्योपैथी के ऊपर और भी बातें होती रहेंगी, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: आज है वर्ल्ड होम्योपैथी डे और इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिषेक कसाना। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं। अभिषेक कसाना जी हैं क्लासिकल होम्योपैथी डॉक्टर और इसी के साथ साथ सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आजकल हम लोग देख रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं और साथ ही साथ हमारी जो बहनें हैं माताएं हैं उनके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत देखने को मिलते हैं फीमेल्स में, तो उसके लिए क्या दवाइयाँ हैं?
1: गौरव, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे विजिट करते हैं, इनको पीसीओएस से सफर कर रहे हैं या फिर इनको अपनी ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, किसी को यूट्रस में गांठ बन गई है। इसके लिए तो मैं क्या समझता हूँ कि वो मतलब माना जाता है होम्योपैथी को।
0: ओके,
1: अब वो पेशेंट्स का जब आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग में सिलेक्शन के बारे में, उसमें इसमें डालना चाहूंगा कि सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग। हम लोग सिलेक्शन करते हैं उसका पूरा मेंटल फिजिकल इमोशन। आई हैव सीन जहाँ पे सप्रेशन होता है किसी बच्चे के अंदर, तो वहाँ उसको पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
0: ओके,
1: जहाँ आपको कोई गुस्सा आया आपने उसको सप्रेस कर लिया
0: जी।
1: अगर आपके पास टाइम है तो आपको एक केस अपने साथ डिस्कस करना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: मेरे पास एक बेटी आई थी, शी वॉज स्टडिंग इन IIT दिल्ली।
0: ओके,
1: IIT से दिल्ली करके उस बच्ची की आप कहीं जॉब लग गई, जॉब लगने के उसकी शादी हो गई।
0: ओके,
1: शी वॉज अ ओल्ड पेशेंट ऑफ माइंड, तो मेरे पास उन्होंने फिर से विजिट किया। उनकी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि बेटिया को आपका PCOD हो गया है।
0: ओके,
1: तो मेरा उस बच्चे से क्वेश्चन था, बेटा आप खुश हो, सब कुछ ठीक चल रहा है आपके यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? एंड शी वाज सेइंग हाँ सर बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मेरा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेटा आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, आपका खाने पीने के अंदर आप बहुत ज्यादा शुगर या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं लेते हो? तो बेटिया का क्वेश्चन का आंसर था कि नहीं अंकल, मैं स्वीट ज्यादा लेती हूँ और मेरा एक्सरसाइज का इतना रूटीन नहीं बनता है। तो फिर मैंने उससे और बच्चे से पूछा, बेटा आपका कुछ सडन वेट गेन तो नहीं हुआ है? बच्चे का आंसर था, नहीं सर इतना वेट गेन नहीं हुआ है मेरा। जब मैं डीप उसके अंदर केस के अंदर गया तो मुझे पता लगा कि इस बच्चे को सप्रेशन था। सप्रेशन कैसे था कि छोटी छोटी बात जो उसको फील कर जाती थी वो बच्ची, जैसे नए घर में गई है, मैं उसका इंसिडेंस लेता हूँ आपको बिना बच्चे का नाम डिस्क्लोज करे हुए कि अंकल मम्मा मेरे मदर इन लॉ हैं वो इतने मतलब पर्टिकुलर हैं कि जैसे मैं उनके लिए खीर बनाई तो कहते हैं कि हाथ को ऐसे चलाओ, मतलब कि एंटी क्लॉक ना चला के क्लॉक वाइज चलाओ।
0: Okay.
1: तो इस टाइप की चीजें मुझे समझ में नहीं आती। मैं IIT इंजीनियर और मेरे को ये लोग ऐसे बताते हैं ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। मैंने कहा ठीक है, देखिए है छोटी सी बात लेकिन उस बच्चे ने किस टाइप से उसको देखी है। तो उसने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मा ये मेरे मदर इन लॉ बताते हैं हर चीज मेरे को टोकते रहते हैं। तो मदर ने उनको बताया कि बेटा कोई बात नहीं, जैसे आपको मदर इन लॉ बताते हैं वैसे ही कर लो आप। एंड उसने अपने फादर को कॉल किया, उनको फादर को कॉल किया, फादर कहते हैं कि जैसा बताते हैं वैसे ही कर लो।
0: okay.
1: अपने हस्बैंड को बताया तो उनके हस्बैंड ने भी यही जवाब दिया कि क्या फर्क पड़ता है, जैसे मम्मी बोलती है वैसे हिला दो ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता
0: जी।
1: लेकिन उस बच्चे को उस टाइप का सप्रेशन हो रहा है। तो इस टाइप की सप्रेशन को घर में कई सारे होने, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन्हीं सप्रेशन से मैंने देखा है कि फीमेल्स के अंदर या तो आपका ब्रेस्ट में गांठ बन जाता है, कभी आपका यूट्रस में गांठ बन जाता है, या आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर। तो इसलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं उसको देखता हूँ कि फीमेल केसेस के अंदर हमारी जो बहनें हमारे पास जो मतलब हमारी ओल्ड एज फीमेल्स आती हैं उनको बड़ा अच्छा रिलीफ मिलता है। इट्स अ सेकंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ फीमेल।
0: ओके, तो मतलब PCOS हो, PCOD हो या फिर कोई भी हार्मोनल इंबैलेंस हो फीमेल्स के अंदर, तो उसका क्योर होम्योपैथी के अंदर है।
1: yes.
0: सर यहाँ पर हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं और अगर मान लेते हैं वो कंफ्यूज है कि होम्योपैथी ट्राई करें या नहीं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: गौरव, जो भी लोग होम्योपैथी के बारे में सोचते हैं कि इसको ट्राई करना है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे शुड फाइंड अ क्वालिफाइड डॉक्टर नियर बाय देम।
0: ओके,
1: जिससे वो मिल पाए, जिससे वो अपनी दवाई ले पाए और किसी अनक्वालिफाइड जगह जाके इलाज ना कराएं वो। द डॉक्टर शुड बी क्वालिफाइड। अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर।
0: okay.
1: और वो खुद उसको होम्योपैथी को आगे अपना बता पाएंगे लोगों के लिए। इट वर्क फॉर देम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ होम्योपैथी के ऊपर बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे भी क्लियर हुए हैं एंड जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बट जाते जाते बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि आज फ्राइडे है, लोगों की पार्टी हो जाएगी आज, तो कल अगर हैंगओवर में अगर वो घूमेंगे तो वो खुद से ही नक्स होमिका ले लेते हैं, क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: So, गौरव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टोटैलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी पेशेंट को आप देखेंगे कि आपका नक्स वोमिका से आराम मिलेगा, किसी पेशेंट को एवीना स्टाइवा से आराम मिलेगा, किसी पेशेंट को सल्फर देने से आराम मिलेगा। तो ये डिसीजन खुद ना लेके अपने किसी डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर के ऊपर आप उसको डालें तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आप लास्ट में बोलेंगे सर होम्योपैथी ने काम नहीं किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ साथ सभी लिसनर से कहना चाहता हूं कि खुद से दवाई मत लीजिएगा, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और उनसे दवाई लीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा।
1: सो थैंक यू वेरी मच गौरव, इट्स बीइंग माय प्लेजर कि आप लोगों ने मुझे यहां पर अपने एफएम चैनल पे यहां पे मुझको इनवाइट किया। आई एम सो थैंकफुल कि आपकी वजह से आज जनरेशन हम लोग को सुन पाएंगी, यहाँ पे मासेस हमारे होम्योपैथी के जो मिसकॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है वो सब चीज़ों क्लियर कर पाएंगे।
0: जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सारे लिसनर्स को भी। एंड मिलते हैं आप सभी से फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: मैं तुम्हारा क्या हूँ? कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है? कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले, रहेगा तो गुलाम ही।

जब बाहर की दुनिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, अंदर की दुनिया थोड़ी तेज हो जाती है। यादें, बातें और कुछ अधूरे खत सब वापस आने लगते हैं। तो चलिए इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन अल्फाजों की जो कभी किसी ने लिखे थे, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही लिखे गए हों। तो आज का ये एहसास भी कुछ ऐसा है। क्या कभी आपने किसी के लिए कुछ

जो कह दिया जाता है वो कहानी बन जाता है और जो नहीं कहा जाता वो उम्र भर एहसास बनकर रह जाता है। इसीलिए शायद खतों में लिखी हुई मोहब्बत हमेशा थोड़ी ज्यादा सच्ची लगती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, बस दिल में जो होता है वो कह देना होता है। तो आज इश्क शायराना में मैं उन्हीं एहसासों के बारे में बात करूंगी जो कहीं नहीं गए लेकिन महसूस हुए हैं। मैं हूं गीत और ये है इश्क बाजियां। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। अभी मैंने बात की थी उन खतों की जो कभी लिखे तो गए लेकिन भेजे नहीं गए, और कभी कभी खत सिर्फ कागज पर नहीं होते, वो इंसान के लहजे में होते हैं, उसकी बातों में, उसके बदले हुए अंदाज में भी छुपे होते हैं। आज की इस खामोश रात में एक गजल याद आ रही है दाग दहलवी साहब की, तो दाग दहलवी साहब की गजल के ये चार शेर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था, ना था रकीब तो वो आखिर नाम किसका था। कितनी अजीब बात है ना, पहले हम किसी के हर लफ्ज में अपना नाम ढूंढते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उसी के लफ्जों में किसी और का नाम दिखाई देने लगता है। खत वही होता है, कागज भी वही होता है, लेकिन एहसास बदल जाते हैं। और तब दिल पूछता है कि ये जो बदला हुआ लहजा है, ये जो नया सा अपनापन है, या फिर किसके लिए है। दाग आगे लिखते हैं, वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया है, ये काम किसका था। इश्क में सबसे खतरनाक चीज पता है क्या होती है, बदल जाना। जब कोई इंसान धीरे धीरे बदलता है और हमें पता भी होता है कि वो हमें चोट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उसी से जवाब चाहते हैं, जैसे दिल को यकीन ही नहीं होता कि जिसने इतना प्यार दिया था वो इतना दर्द भी दे सकता है। और आगे कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था। कभी किसी ने आपसे भी ऐसे वादे किए हैं, वो वादे जो उस वक्त बहुत सच्चे लगते थे लेकिन वक्त के साथ बस लफ्ज बनकर रह गए। इश्क में सबसे ज्यादा तकलीफ धोखा देना नहीं होता है बल्कि भूल जाना होता है। जब सामने वाला इंसान उन बातों को ही भूल जाए जो कभी उसने बड़ी सच्चाई से कही थी। और आखिर में दाग कहते हैं, गुजर गया वो जमाना, कहूं तो किससे कहूं, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। यानी अब वो वक्त चला गया लेकिन

इंसान चला जाता है लेकिन उसका ख्याल नहीं जाता। मैं हूँ गीत, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे उन्हीं अनकहे एहसासों के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और सच कहूँ तो आजकल इश्क ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है। मतलब लोग फॉरएवर बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस टेम्पररी होते हैं। इसी आज के कंफ्यूजिंग से इश्क को बहुत पहले ही समझ लिया था जॉन एलिया साहब ने। उनकी शायरी सीधा दिल पर नहीं लगती लेकिन सीधे सच बोल देती है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है अपनी खूबसूरत सी गजल में। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हीं को लौटा रहे हैं। मतलब इमेजिन करो, किसी को भूलने के लिए आप उसकी सारी मेमोरीज उसे वापस कर रहे हो। टेक्स्ट डिलीट, फोटोज डिलीट, और जो तोहफे कभी उन्होंने भेजे थे वो भी आपने उनको भेज दिए। और ऊपर से ये भी फील कराना, देखो हम कितना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप टूट जाते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, नहीं तरके मोहब्बत पर वो राजी, कयामत है कि हम समझा रहे हैं। आजकल रिलेशनशिप्स में यही तो हो रहा है, एक इंसान ऑलरेडी मूव ऑन करना चाहता है और दूसरा अभी भी लेट्स फिक्स दिस मोड में होता है। एक कन्वेंस कर रहा है और दूसरा कन्वेंस होने को तैयार भी नहीं है। और फिर वो आगे लिखते हैं, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कितनी स्कैरी लाइन है ना ये। कभी कभी कुछ रिश्ते शुरू ही इसीलिए होते हैं ताकि एक दिन वो हमें छोड़कर जाने की आदत से खा सके। मतलब आप किसी से मिलते हो, आप उसे अटैच होते हो लेकिन, और फिर आपको रियलाइज होता है कि दिस वॉज नेवर मेंट टू लास्ट, बस एक लेसन था। और जॉन ही आगे कहते हैं, तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। दिस इज सो रियल। जब कोई हमारे पास होता है हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं, सीन करके लेट रिप्लाई, बहुत हाफ एफर्ट्स होते हैं, अटेंशन डिवाइडेड होती है। और जैसे वो हमसे दूर जाता है, सडनली आई मिस यू, आई डिडंट रियलाइज योर वैल्यू। इश्क की टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ सी है यार। और सबसे डेंजरस लाइन शायद यही है, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान के ठुकरा रहे हैं। मतलब हम जानते हैं कि वो हमारे अपने हैं फिर भी हम उन्हें ही हर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? ईगो, इमैच्योरिटी, अनहील्ड इमोशंस। आजकल का इश्क ना सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, उनमें पास्ट ट्रॉमा, ओवरथिंकिंग और व्हाट इफ भी शामिल होता है। और शायद इसीलिए रिलेशनशिप्स आजकल बहुत कम चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग से ज्यादा। तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, इसके बाद लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। खतों के बारे में बात चल रही है। कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनका एहसास, उनकी याद, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। और शायद इसी एहसास को बहुत ही नर्म और गहराई से लिखा है गुलजार साहब ने। वो कहते हैं, खुशबू जैसे लोग मिले अफसानों में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? आप बिल्कुल ठीक होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी चैट, कोई पुराना फोटो या बस किसी का नाम, और वापस आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला था। हम कहते हैं वी आर हील्ड, बट ऑल इट टेक्स इज वन मेमोरी एंड एवरीथिंग्स कम बैक। और फिर शायद शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है बालिश्त। बालिश्त का मतलब होता है हाथ की फैलाव, जैसे हम अपने हाथ की उंगलियों को फैलाकर किसी दूरी को नापते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ माप नहीं है, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसने इंतजार को इतना महसूस किया है कि हर पल हर साया वो अपने हाथ से नाप रहा हो। इमेजिन करो, आप किसी का इंतजार कर रहे हो और हर मिनट इतना भारी लग रहा है कि आप उसे लिटरली महसूस कर सकते हैं। आजकल हम कहते हैं यार रिप्लाई क्यों नहीं आया, लास्ट सीन कब का है, लेकिन पहले इंतजार ऐसा होता था जहां वक्त को महसूस किया जाता था, गिना नहीं जाता था। और फिर आगे गुलजार साहब ने लिखा है, जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। बहुत गहरी बात है। कभी कभी हम खुद को, अपने दर्द को बार बार जीते हैं, सेम मेमोरीज, सेम कन्वर्सेशन, सेम एंडिंग, और हमें पता भी होता है कि इससे हर्ट होगा, फिर भी हम वापस वहीं जाते हैं। क्योंकि सच ये है, कभी कभी हम इंसान को नहीं उसके साथ जुड़े एहसासों को मिस करते हैं। और आखिर में गुलजार साहब कहते हैं, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। कितनी सच्ची बात है, हर कोई एक ही स्पीड से मूव ऑन नहीं करता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से समझता है, और कोई शायद कभी समझ नहीं पाता। और शायद यही प्यार की सबसे खामोश सच्चाई है, टाइमिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। कोई जल्दी आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, और कोई बहुत पीछे रह जाता है, और बीच में रह जाती हैं कुछ यादें, कुछ अधूरी बातें और कुछ अनकहे खत। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे।
1: देखो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
0: लेकिन

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में, हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चल।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत। जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली की।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है। और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए। और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी, ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजों की दिल दिया गल्ला।

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

0: मैं जा रही।
1: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
2: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
3: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
4: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप। शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और

प्यार में एक थिन लाइन होती है, दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्लां, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखा ही गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है। रमेश बाबू अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दियां गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। तो हेलो।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
7: માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વાહ ફરે વાદળ ફરે ને વાયરો ફરે પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો આ મિત્રો કદી ના ફરે કે હા

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: वो सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहि तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निस्सार है, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान की रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ऐ शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल के शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया। एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा आके, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरण अरविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो। हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं।